नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ थी असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 29 तारीख, 23वीं सन 2026 दे जून महीने दी 19 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 41 मिनट हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा की इस खूबसूरत शुरुआत विच असी अपने सारे सुनने वालियां दा निघा स्वागत करते हैं।

8:02 ते पब्लिक मंच प्रोग्राम, रात 9:00 सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस, 9:02 ते जो तुहाडा दिल चाहुंदा होएगा हिंदी फिल्मी गीतां दा आनंद माणोगे, अपनियां फरमाइशां सुनोगे दिल चाहता है प्रोग्राम दे राही। 10:00 शामी गजल प्रोग्राम, 10:30 एक प्यार का नगमा है।

संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंतु मस्ट कर रही है। आपकी जो कोई सानू पवित्र कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई ऐसा पवित्र पुरुष मिल जावे, तां हमेशा उस दे नाल बह के कुछ गल्लां कर लेनियां चाहीदियां, दुख सुख बोल लेने चाहिए है, अपने दिल दियां गल्लां उन्हां नू कह देनियां चाहीदियां। पर जे कोई सानू ऐसा व्यक्ति जिहड़ा चरित्र दा माड़ा होवे वो मिल जावे, तां उस दे सामने हमेशा चुप रहण दे विच ही भलाई हुंदी है। चंगे इंसान दे नाल असीं कहिंदे ना दुख सुख फरोल लीए तां दुख साडे घट जांदे ने, सुख साडे वध जांदे ने। पर कोई ऐसा इंसान जदों सानू जिंदगी दे विच टक्करदा है जो शायद साडियां गल्लां दा साडे हालातां दा मजाक बना सकदा है, तां उस व्यक्ति दे सामने चुप भली है और सिर्फ उस रब दे अगे दिल फोलना, मैं कहां ओह सब तों वड्डी भलाई है।

FM ਮੈਨਿਕ ਸੁਦੂਰ ਸ਼ਰੀਆ 7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ FM ਰਿੰਬੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਤੀ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪੇਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन करीब 2400 करोड़ रुपए के लाभ वंडणगे। पंजाब दे विच ए प्रोग्राम 6 थावां ते करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरिस दे विच वीवा टेक सम्मेलन नूं संबोधन किया। श्री मोदी ने कई प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियां दे नाल भी मुलाकात की। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐतवार नूं होण वाली नीट यूजी मोड परीक्षा की तैयारियां दा मुलांकण करन लई एक उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी कीती। मौजूदा वित्तीय साल दे विच अनुसूचित जातां दे विद्यार्थियों नूं स्कॉलरशिप लाभ प्रदान करन दे विच महत्वपूर्ण वाधा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार वित्तीय साल 2026-27 दे विच 26,000 किलोमीटर तो वध देहाती सड़कां दा निर्माण करेगी। बवंजा भारतीय संस्थावां नूं QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 दे विच शामिल किया गया है। IIT दिल्ली विश्व पद्धर ते 198वें स्थान नाल भारत च सर्वोच्च रैंकिंग वाली संस्था बनी हुई है। केंद्र सरकार दे वल्लों इतिहासक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट नूं मुड़ जीवित किया गया। करीब 1400 करोड़ रुपए दे नाल 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाई जाएगी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिया 8 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया है। भारत की मीनाक्षी हुडा चीन के ग्युआन विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल्स दे विच पहुंच गई है। मकाओ ओपन बैडमिंटन दे विच अनमोल खरब ते अश्मिता चाहिल चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स दे विच पहुंच गई ने। ए सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग है जी सारिया नू, सारिया नू, सारिया नू। सवेर दी सत श्री अकाल और सवेर दी इन्नी सोहनी जी शुरुआत और थोड़ी अपनी आरजे अंजलि आ गई है जी थोड़े नाल अज दे इस सफर दे विच और खूबसूरत जी शुरुआत करन दे लई। मैं क्या जदों सवेर की शुरुआत वधिया हो जाती है ना, खिलखिलाउंदे चेहरियां दे नाल मुस्कुराहट दे

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सरकार दे किरत ते रोजगार मंत्रालय दे वल्लों विकसित भारत रोजगार योजना तहत रोजगार मेला 2026 दा आयोजन किया जा रहा है, जिस नूं मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुशोभित करेंगे और इस समारोह का सीधा प्रसारण तुसी एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते शाम 5 बजे तो सुन सकोगे। जिहड़े साडे जलंधर दे किसान ने उहनां दे लई इक वधिया मौका इक वधिया खुशखबरी भी है जी। साढ़े जिले के झोने की थान जेकर मक्की लगाते ने किसान तो उन्होंने 17,500 रुपये तक की जी है उन्होंने एप्रीसीएशन अमाउंट जी है वह दी जाएगी। जिले के झोने की थान के उत्ते जलंधर के जो किसान मक्की की फसल अपनाएंगे उन्होंने खेतीबाड़ी विभाग के वलों 17,500 रुपये जी प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन के रूप के दिए जाएंगे खेतीबाड़ी विभाग के वलों। और इसका रजिस्ट्रेशन जोड़ा है वो जारी है या फिर हेल्पलाइन नंबर जोड़ा 98-140-16-068 के उत्ते कॉल करके इस बारे होर जानकारी जी है वह लै सकते हो। और सरकार दे वल्लों वख वख जिलियां दे विच कुल 20,000 हैक्टेयर रकबे दे विच ए स्कीम दे तहत झोने दी थां दे उत्ते मक्की बीजण दे लई किसानां नूं प्रोत्साहित किया जा रहा और उन्हां नूं झोने दी थां उत्ते मक्की बीजण दे लई कहा जा रहा। दस दिए कि झोने की थां मक्की बीजण दे लई सरकारी ये मदद जी है सरकारी मदद की जाएगी। प्रोत्साहन राशि जी है 17,500 रुपये प्रति हैक्टेयर के तौर के उत्ते लागू होगी और कुल 20,000 हैक्टेयर तक वक् वक् जिलों का जोड़ा टीचा रख्या गया। रजिस्ट्रेशन तुसी कर सकते हो उसके उत्ते हेल्पलाइन नंबर जोड़ा 98-140-16-068 के उत्ते तुसी कॉल करके होर भी जानकारी लै सकते हो। मकसद सिर्फ इन्ना है कि पानी बचाउण दे लई झोने दी जदों असीं फसल करदे हां तां पानी बहुत ज़्यादा लगता है तां पानी बचाउण दे लई झोने दी थां घट पानी वाली मक्की दी फसल नूं जिहड़ा है होर ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है। और जेकर तुसीं जलंधर दे किसान हो तां झोने दी थां दे उत्ते मक्की बेचना चाहुंदे हो तां तुसीं इस नंबर दे उत्ते कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकदे हो। बाकी जिहड़ा है होर भी इस दे बारे तुहानूं जानकारी जिहड़ी है इस नंबर तो मिल सकती है। बाकी होर जानकारियां जिहड़ियां ने ना तुहाडे नाल मैं साझियां करदियां रहणियां ने और क्योंकि क्योंकि क्योंकि मैं इत्थे ही गल नूं हैगी आ होर भी बहुत सारा कुछ खास हैगा अज दी तरीक नूं और इंटरनेशनल डे सैलीब्रेट हो रहा। इंटरनेशनल डे केड़ा सैलीब्रेट हो रहा अज दी तरीक नूं 19 जून नूं केड़ा डे सैलीब्रेट हो रहा उस दे बारे दसांगी। गल ये कि असी कई वारी ऐसे जंग दे माहौल देखे या फिर सुने कोई ऐसे हालात बन जाते हैं संकट का मौका कोई ऐसा बन जाता और इन हालातों के कई बार ऐसिया कुछ घटनावान भी हो जाएं ने जिन्हों के बारे असी पढ़ते सुनते हाँ तो वह ज़्यादा दिल में जोड़ा है वह दुख पहुँचा ने। सो दसागी थोनों कि आखिरकार डे सैलीब्रेट हो रहा है और खास डे सैलीब्रेट हो रहा है इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सैक्शुअल वायलेंस इन कन्फलिक्ट भाव कि संघर्ष के दौरान कोई भी ऐसा संघर्ष का मौका हो हथियारबंद संघर्षों का टाइम हो जंग हो फिर संकट काल का कोई हालात होन इन्हों मौका के उत्ते यौन हिंसा होंगी है सैक्शुअल वायलेंस होंगी है उसके खात्मे के लिए इंटरनेशनल डे सैलीब्रेट हो रहा है और लोगों इस प्रति जागरूकता जी फैलाने के लिए और पीड़ित जोड़े ने उस मौके के उत्ते उन्होंने हालातों के जो पीड़ित लोग सन उन्होंने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने उस टाइम के उस टाइम पर जो मैंटली हरास हुए थे उसनों लैके जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सैलीब्रेट होंगे 19 जून की तारीख में सैलीब्रेट होंगे। ये दिन खास है
ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਅੱਜ ਇੱਕ

0: प्रोग्राम चल रहा है जी एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से उत्ते गुड मॉर्निंग जलंधर थोड़ी अपनी आज अंजलि दे नाल और अज का दिन सैलीब्रेट हो रहा है थोनू सब नू दसिया ही है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सैक्शुअल वायलेंस एंड कनफ्लिक्ट भाव कि संघर्ष के दौरान जंग के दौरान किसी भी तरह के संकटकालीन हालातों के मौके के उत्ते असं देखते हैं कई ऐसे हालात बन जाते हैं कई लोग जड़े ने यौन हिंसा का शिकार बनते हैं उसके खात्मे के लिए अज अंतरराष्ट्रीय डे सैलीब्रेट हो रहा 19 जून में यह दिन सैलीब्रेट होना शुरू किया करवाया गया सीगा यूनाइटेड नेशनस के वलों और होर इस दिन का की इतिहास है उसके बारे जानेंगे अज खास साढ़े नाल गलबात दे लई साढ़े नाल जुड़े ने डॉक्टर रणजीत सिंह कुमन जी जो कि प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस ने पंजाब स्कूल ऑफ इकनोमिक्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विच साढ़े नाल फोन लाइन ते सर जुड़े ने हैलो सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम दे विच
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी मेरे इस प्रोग्राम नाल जोड़न
0: जी आज दिन सर सेलिब्रेट हो रहे

0: FM band 102.7 megahertz FM rainbow ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ
1: ਯੋਜਨਾ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਟੁਡੇ ਗਵਰਨਰ ਅਪਰੂਵ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਸੀਟਸ ਐਟ ਮਿਨਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी है खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव पहला खास खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी अनिश्चितताओं से रुकावटों दरमियान भारत दुनिया लिए एक भरोसेमंद स्थाई भाईवाल वजों उभरिया है श्री मोदी अज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि वंडणगे पंजाब में यह प्रोग्राम 6 थावां से कराया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतरराष्ट्रीय सिकल सैल दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे अमरीका ने ईरान नाल होए समझौते तो बाद ईरानी बंदर

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर दे विच अंतरराष्ट्रीय स्किल्स एएसएल दिवस के मौके के उत्ते आयोजित एक प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेंगे। अमरीका ने ईरान नाल होए समझौते तो बाद ईरानी बंदरगाहां दे विच समुद्री जहाजा की आवाजाई ते लगी समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट ने अग्निवीरां नूं सिख्या ते हुनर विकास राय समर्थ बनाउण दे लई अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल एक समझौते ते दस्तखत कीते ने। केंद्र सरकार दे वल्लों इतिहासिक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट नूं मुड़ जीवित कीता गया। करीब 1400 करोड़ रुपए नाल 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाई जाएगी। सीबीआई ने पंचकूला नगर निगम दे साबका कमिश्नर अते आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह नूं निगम तो सरकारी रकमां दी हेराफेरी दे मामले दे विच गिरफ्तार कीता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट अते चंडीगढ़ पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन दे विच खरड़ तो एक वकील नूं नशीले पदार्थां समेत गिरफ्तार कीता है। वह पाकिस्तान स्थित ड्रग सिंडिकेट नाल जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा सी। मौसम विभाग ने आज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते नवी दिल्ली दे विच गरज चमक दे नाल तेज हवावां चलन की संभावना जताई है। भारत ने चीन के ग्वांगडोंग विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल्स ले क्वालीफाई कर लिया है। इस सन हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: मैथ्स दे मास्टर ने अपनी मंगेतर जड़ी है उन्होंने चिट्ठी विच लिखिया 12.9999 मंगेतर ने पूछिया भाई की लिखिया मास्टर जी कहंदा तेरा होने लगा पवन लिम्बा जी ने सानू मैसेज किया जी अमरपुरा फसिलका तो एक गुजरते हुए दिन ढलदी हुई उम्र दसदी है कि जिंदगी जी ली जाए तो बेहतर है दुखां दा खत्म होना तो सिर्फ एक धोखा है जी। राम स्वरूप जी ने सानू ये मैसेज किया जी। राम स्वरूप अरोड़ा जी चौंक चिलिया सुल्तानपुर लोधी तो मैसेज आया जी। अगला मैसेज किन्हां दा आया है अजो सुनते हैं।
1: हाँ जी बेटा जी सारे दोस्तों साड़ी भैन रूला जी सानू जसवीर सिंह दूड़ा वालों प्यार प्रीत सत श्रीकाल सो दिल अपना पंजाबी दिलें धड़कन है जी। सवेर तो ही प्रोग्राम शो सुन रहे हैं जी थोड़ा जो तुम ए आई बारे जिक्र किया ए आई की गल कर लो या साइबर क्राइम की जा के बच्चों के मोबाइल की देखो कोई भी चीज़ है जदों कोई चीज़ हद तो वध जाए उसनू कंट्रोल करना बड़ा ही औखा है इसनू गंभीरता नाल सोचण दी जरूरत है रब ही रखा है। सो डॉक्टर रणजीत सिंह उन्होंने जो जानकारियां दित्तियां बहुत ही पसंद आईयां मन नू लगियां कि जो कि हाउस मेकर लेडीज के यानी कि औरत दा जिंदगी च की रोल है इसनू सोचन समझन दी बहुत ही जरूरत है जिसे कि अज दे समय च अजे बहुत घाट है। सरकार ने कानून बनाए है पर उन्होंने भी जानने दी लोड़ है। सो हर एक नू इस चीज बारे जरूर जागरूक होना चाहिदा है। सो अंजलि पुत्रा जी मेरा बचपन का एक दोस्त है मनजीत सिंह जो कि परिवार अक्सर वो एफएम जैन वो खर्च सुनते हैं मैं उन्होंने काफ़ी जोर लगाया पर मैसेज करने तो झिझकते हैं शर्माते हैं उन्होंने मैं नंबर दिता और उन्होंने मशहूर किया शायद वह भी जरूर शामिल हो गए। सो मैं सब की तंदुरुस्ती मंगता होया मिंटू चंदेल जी उन्होंने दी भी सब की तंदुरुस्ती मंगता सुख मानता जी मैं जसवीर सिंह दूड़ा जी धन्यवाद सारे राज जी को खुश रहो जी।
0: थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजन दे लई और इस प्रोग्राम दे विच शामिल होण दे लई। जी थोड़े जो दोस्त ने ना उन्होंने फटाफट तुम कह दो कि वह मैसेज भेजन और फटाफट मैसेज भेजन कि तुम कि बोली बोलते हो कितने रेंदे हो जिथे उत्थे कि बोली बोली जाती है उप बोली जी पंजाबियों की हैगी है और इस तो इलावा तुम होर कोई जेकर बोली जानते हो भाषा जानते हो तो उसके बारे भी जरूर इस मैसेज के जिक्र करो। सारे साढ़े लिसनर दोस्तों बस बई फटाफट मैसेज भेज दो क्योंकि साढ़े नौ होने वाले ने पता लगे हूँ अद्धा घंटा निकल भी जाता है गल्ला करते करते चार जने बैठे हो ना पता नहीं लगता कितना टाइम निकल गया। बाकी जो दिलों तो दिलों की सांझ होती है तो पता नहीं लगना चाहिए। फिलहाल अगला मैसेज कि आया जी आ जाओ पहला सुनते ही ले आने
2: ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਤਰਲੋਚਨ ਟੇਲਰ ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰੋ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
2: ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਅੰਜਲੀ ਜੀ
0: ਸਭ ਠੀਕ ਜੀ
2: ਦੋ ਕਲੈਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਅੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਏ ਇੱਧਰ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ

0: आई हुई है मैडम अंजलि, आई हुई है। और थोड़ी जी रोक लेना जी। कहते ने कि प्यार मुहब्बत बंडिया बढ़ जाता है, कहते ने प्यार मुहब्बत बंडिया बढ़ जाता है, किरत कमाई का कमाया धन दौलत दान कीतियां भी बढ़ जाता है, दान कीतियां भी बढ़ जाता है। उंज भावें दुनिया करोड़ वसदी, उंज भावें दुनिया करोड़ वसदी, एक चंगी औलाद करके मापियां दा रोब बिना बधाया बढ़ जाता है, बिना बधाया बढ़ जाता है। सो रल मिल के जो भी है ना आप पेरेंट्स की अपनी सेवा करनी है, बुरे लोगों तो बुरिया आदतों तो आप दूर रहना जिन्ना भी जूथ है। बाकी जिन्हें मेरे भैन भरा ने सारे ही मैसेज बहुत वधिया करते हैं, सारे मेरे नाल सियाने ने। सो मैं यही गुजारिश करता है माड़िया आदतों माड़े विचार माड़े लोगों तो दूर रहने की एक रिक्वेस्ट करता हाँ सबनों। थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजण दे लई और प्रोग्राम दे विच शामिल होण दे लई अपने विचार भेजण दे लई। बुराई बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कम नहीं होती, सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। की मान संगरूर तो सानू मैसेज कर रहे ने बई। की मान जी ने सानू मैसेज हिंदी विच लिख के भेजे, अपना नाम पंजाबी विच लिख के भेजे, पंजाबी विच लिख देंदे समझ आ जाता मैनू। हाँ चलो जी, मैसेजेस जिहड़े ने ना बहुत सारे लिसनर दोस्तां दे आ रहे ने सानू, और अक्सर तुहाडी कीती होई चलाकी दा पता तुहाडे नाल दे नूं पता हुंदा, नाल दे नूं पता हुंदा, उह गल वक्खरी है कि उह सांझ ते प्यार करके बोलदे नहीं ने। अमरजीत जसल प्रेम मार्केट बठिंडा तो सानू इह मैसेज कर रहे ने, और मैसेज अगला आ गया जी, केड़ा है आज सुनदे हां।
2: नमस्कार मैडम जी, साडा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो बोलते हैं असि, हमारे तो भी बागड़ी भी बोले, पंजाबी भी बोले, हरियाणवी भी बोले, क्योंकि मारो एरियो देखो पंजाब बॉर्डर पर है और हमारी छोटी मोटी रिश्तेदारियां हरियाणा में भी है, तो मारे मान लियो हरियाणवी भी बोले, पंजाबी भी बोले और राजस्थानी भी वागी जिया। मान लियो बीकानेर जैसलमेर जोधपुर कानी चले जाए तो बुने मारवाड़ी, फिर मारे मान लियो राजस्थान के परले हिस्सा चले जा जयपुर साइड में तो बुने भी मांगी हाड़ोती भाषा है जी, वह भी बहुत अच्छी भाषा है। और सारा ज्यादा माने अच्छी लागे पंजाबी, क्योंकि जिया हमारे नजदीक में अब और फाजिलका फरोजपुर ताई मारो, क्योंकि खेती करना बंदा जी, बुनो भी कोई पंजीरी वगैरह समान वगैरह बिना भी लिया करा, तो जी पंजाबी भी माने बहुत अच्छी लागे। जय जवान जय किसान।
1: वाह जी वाह, मेरा दिल खुश हो गया इन्हों का मैसेज सुन के। और जिमें कि मैं क्या जी, इन्होंने प्रोपर मेरा मैसेज के ना जो मैं शुरुआत के क्या सी ना, इन्होंने प्रोपर उस मैसेज उदा ही फॉलो करके भेजा। नहीं मैं की कहा सीगा, मैं क्या तुम जिते रेंदे हो ना उस भाषा दे विच उस बोली दे विच मैसेज रिकॉर्ड करके भेजो, और अपने इस एक मैसेज दे विच उन्होंने पंजाबी भी बोल दिती और नाल दी नाल हरियाणवी जिते वो रेंदे ने उत्थों दी भी दस दिता, और नाल दी नाल सानू होर भाषावां जिहड़ियां ने ना होर बोलियां ने उन्हां दे बारे भी दस दिता। मारवाड़ी हाड़ोती मैं ठीक बोलिया? हाँ, ए बारे भी सानू दस दिता। थैंक यू सो मच जी मैसेज करन दे लई, और इन्ना प्यारा मैसेज साडे प्रोग्राम दे विच भेजण दे लई थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम चल रहा जी दिल अपना पंजाबी, थोड़ी अपनी आरजे अंजलि दे नाल बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारे मैसेजेस उस पार आ रहे जी। वेट कर लो, वेट कर लो।
3: इंग्लैंड की धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जितण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: और रिहोना ने मनी एंड जशन मोमी वीपीओ इबान कला अमृतसर तो सानू ए आया जी मैसेज। और अगला एक मैसेज आ गया जी, आज पहला सुनते हैं की कहंदे ने साडे लिसनर दोस्त।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तो, प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अंजलि बेटी
0: जी।
1: और बेटी ठीक ठाक हो?
0: सब ठीक है जी, बहुत
1: बढ़िया। आज अपन गल करते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो दे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी बारे। बेटी ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये लखां ही दिलां दी धड़कन बन चुका है। सानू तां नींद मसा आउंदी है ते दिन मसा चढ़दा है भी कदों 9 वजन ते कदों असीं अपना दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम विच पार्टिसिपेट करिए। बेटी इस प्रोग्राम ने सानू कई नवे दोस्त दिते है, कई नवियां भैणां भी दित्तियां है। जिवें मैडम किरण नरूला जी है, वो बहुत सोहने टिप्स दसदे है। कई बार तां तुहाडे वास्ते ओह कुछ ना कुछ डिश तैयार करके खाण नू भी परोस दिंदे है। बेटी ये एक प्यार दी निशानी है ते एक साडे सपीदो मंडी जिला जींद तो जसवीर सिंह अरोड़ा साहब वो भी मना मोही प्यार करते हैं। सानू भी ये दोस्त सानू आकाशवाणी एफ एम रेनवो ने दिते है ते असी एफ एम रेनवो का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाले धन्यवाद करते हैं साडियां बेटियां का जिहड़ियां सानू एक दूसरे नाल मिलन दे कोई ना कोई नवी विधि बना दिंदियां है, कोई ना कोई नवा ढंग दस दिंदियां सानू बोलन का। तो असी बड़े ही प्यार नाल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। बेटी अज इन्ना ही, मैं सतनाम सिंह रखरा बागा पुराना तो जी, सत श्री अकाल दोस्तों।
0: थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजन दे लई। वाकई ही दिलां नूं दिलां दे नाल जोड़न वाला साडा ई प्रोग्राम, और वधिया लगदा जदों साडे लिसनर दोस्त जिहड़े ने इसदा हिस्सा बणदे ने, अपना प्यार जिहड़ा है बोल के लिख के साडे तक पहुँचा दिंदे ने। फिलहाल साडे कोल किहड़ा मैसेज आ गया जी, आ जाओ पहला सुणदे आं।
2: नमस्कार जी सारे श्रोतां, नमस्कार। अभी अभी एक भाई को मैसेज आयो, मैं बीबी एरिया में बोलूँ, मानगढ़ राजस्थान हूँ। तो बड़ो अच्छा लगे, अभी मेरे एरिए का भाई है जिनका भी जुड़न आ गया है परों जलंधर हूँ, और बिल्कुल पंजाब सागा गया है, मारो बहुत प्रेम है जी, बिल्कुल हमारी बॉर्डर टच है। तो सिर्फ भाषा ही कोनी, बठा को खाना पीना है, बठा को पहनावो भी बिल्कुल माना प्रेरित करा है। इंगे सागे सागे मारो जी को एरियो है मानगढ़ को या गंगानगर को कर लियो थे, तो बिल्कुल बॉर्डर टच है, तो हर चीज में मिक्सअप है जी, हरियाणवी कर लियो जी, पंजाबी जी, राजस्थानी, और माना ही पर बड़ो मान है, बहुत मान है। पहला भी भाई को मैसेज आयो, भी ना भी धन्यवाद, मैसेज करे करो आप भी शामिल हुआ आठ जाके, बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे श्रोताओं ने, नमस्कार सत श्री अकाल।
0: वाह जी वाह, मेरा दोबारा तो दिल खुश हो गया कि एक ही एरिया दे साडे लिसनर दोस्त ने, और सानू इत्थों बॉर्डर तो कहते ने इन्हों का एरिया जिहड़ा है बॉर्डर दे नाल लगदा, सानू उत्थों मैसेज करदे ने, हरियाणवी भी आ जाती है और नाल दी नाल साडी पंजाबी भी आ जाती है, राजस्थानी भी आ जाती है, किन्ना सोहना सुमेल लगदा ना। अगला मैसेज कहना आया जी साढ़े कोल, किन्ने सारे मैसेजेस आए ने और मिनट सारे रह गए ने, दस दस मिनटों के मैं किड़ा किड़ा मैसेजेस प्ले कर दूँगी। थानू ताइयों कहिंदी आ ना फटाफट फटाफट मैसेजेस जिहड़े ने ना भेजना स्टार्ट कर दिया करो। फिलहाल अगला मैसेज आज सुनते हैं जी।
3: हेलो दोस्तों, दिल अपना पंजाबी, मैं जी एस मुल्तानी जलंधर तो, मैडम जी तो तुहाडी सारी टीम नूं प्यार भरी सत श्री अकाल है जी। मैम मैं एक गीत दी दो लाइना लेके आज हुए हैं जरा कबूल करना जी। कसरत योगा सैर करो, लगे ना कोई रोग, हसदे खेड़दे जिंदगी गुजारो, फिर मजा आउंदा है जदों वाह वाह करनगे लोग। सहेली मेरी मार गई हाथ वे, चल चलिए करन वाक वे, सहेली मेरी मार गई हाथ वे, चलो चलिए करन बात वे, इष्ट पुष्ट ते नरुआ शरीर बनावांगे, ओ सहेली मेरी मार गई हाथ वे, चल चलिए करन बात वे।
0: वाह जी वो वॉक और हॉक नु तुसी किदा मिला देता, किदा सुमेल बना देता, थैंक यू।

मुड़ जीवंत किया गया। करीब 1400 करोड़ रुपए नाल 39.66 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल लाइन बनाई जाएगी। सीबीआई ने पंचकुला नगर निगम के साबका कमिश्नर ते आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह नू निगम तो सरकारी रकमा दी हेराफेरी दे मामले विच गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ जोनल यूनिट अते चंडीगढ़ पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन विच खरड़ तो एक वकील नू नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार किया है। ओ पाकिस्तान स्थित ड्रग सिंडिकेट नाल जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा सिगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच गरज चमक नाल तेज हवा चलन की संभावना जताई है। ते भारत ने चीन दे ग्वांगडोंग विच विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप दे फाइनल लई क्वालीफाई कर लिया है। SNFM News Headlines से आहुन सुनते प्रोग्राम गीत बहार सुनते रहो 102.7 MHz आकाशवाणी FM Rainbow।

भी जाओ, आ भी जाओ। अरे ठीक है, आ गई मैं, आरजे गरिमा, थोड़े ना आकाशवाणी एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना, ऑफ कोर्स गीत बहार। सो बेसिकली दिस मूवी आवारा पन टू जो है 14th of August में शायद रिलीज है, आई थिंक शायद ही जो डेट अनाउंस हुई है फिलहाल। एंड 90s दी क्या गलबात होंगी सी, मतलब के दे गाने एंड शान देवी गाने, एंड देयर वॉज अ सिंगर मोहित चौहान। आई मीन ऑफकोर्स अपने सिंगिंग स्टाइल अपने गाने के नाल हमेशा सारे नाल है नहीं सिंगर्स, बट सीरियसली 90s दा ओ दौर वापस नहीं आएगा। बट नाओ आज दौर काफ़ी वधिया सिंगर्स ने, अरिजीत सिंह है, एंड दैन जुबीन नौटियाल इज ऑल्सो देयर। सो आई थिंक जुबीन नौटियाल नीति मोहंती वास्ते जो गाना इंजॉय कर लेना चाहिए है। प्रोग्राम गीत बहार दे विच विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ AIR FM रेनबो। स्टे ट्यून्ड।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार। सो मौसम जो है ना वो आजकल जो प्यारे प्यारे सरप्राइजेस दे रहा है, हल्की फुल्की जी बारिश एंड नेचुरल एसी जो है ना ऑन हो जाता है, सो इट्स रियली अमेजिंग। सो इस मौसम के बिच इस तरीके का म्यूजिक वैसे ही बहुत ज़्यादा चंगा लगता है एंड आई थिंक कि शान की गल हुई सी, आई मीन प्रीवियसली इस गाने तो पहला सोच रही थी कि शान दावी एक जो गाना है वो आप प्ले कर लिए, ये थोड़ा जहा मतलब पुराने गाने का ही नवा है, सो थोड़ा इस वर्जन आप इंजॉय कर लिए शान दे वर्जन नू एंड दिस सॉन्ग इज रियली अमेजिंग। थोड़ा जहा इमोशनल है बट ज़्यादा इमोशनल ना होना, ठीक है, जस्ट इंजॉय दिस ट्रैक। आकाशवाणी एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहे गीत बहार विद मी आरजे गरिमा।

बड़ा कूल सॉन्ग इट वॉज. आकाशवाणी एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना गीत बहार आर जे गरिमा दे नाल. सो जी कदी म्यूजिक कहता है ए जिंदगी गले लगा ले, कदी म्यूजिक कहता है ए जिंदगी खेलेंगे फिर कभी, मिलेंगे फिर कभी, आज मूड ही नहीं है तो डूड ही नहीं है. मतलब लाइफ जिस तरीके नाल अपने रंग दिखाती है ना, उस तरीके नाल जिहड़े संगीत ने वह भी बन जाते हैं. एंड कितना प्यारा शरारती गाना लाइफ में चकांदा पे है कि तू कोई डूड नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा अपने को समझ मत. ओके जी, प्रोग्राम गीत बहार दे विच फिलहाल मैं समझ पा रही हूँ कि अगला गाना जो है उसका इंतजार तो हानू बहुत ही बेताबी नाल है, बेसब्रे ना हो वो, बिकॉज अगला गाना मैं प्ले कर नहीं जा रही हूँ. प्रोग्राम गीत बहार विच बने रहो आर जे गरिमा दे नाल ऑन योर एफएम रेनबो, एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली रियली अमेजिंग एंड भी शांति आवाज़ दे विच है. एंजॉय, स्टे ट्यून्ड.

नाचन तो लागियो रे बेरागी मन, बिकॉज उनसे मिलना है ना। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे गीत बहार आरजे गरिमा देना। सो एक गाना जो है सलमान खान होते पिक्चर आई सी, एंड ऑफ कोर्स ए गाने दे जो बोल ने कुछ मटरी वटरी लेते चले, कुछ तीखा वीखा लेते चले। भाई आजकल ना ट्रेंड चेंज हो गया, जिमें कुछ लैके जाना है ना, मतलब किसी स्पेशल वन दे लिए, तो तुसी ना एक पैकेट टॉफीज दा कैंडीज दा ले चलो, अगली खुश हो जाएगी। यस क्योंकि थोड़ा ना किसी ने ट्रेंड इतना चेंज कर दिता है, एंड ये चीज़ हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे, टॉफीज़ का पैकेट दे दो। हूँ कि बारे गल कर रही हूँ मैं, किस वाले इशारा है, समझदार नू इशारा काफ़ी है, एंड समझदार दे लिए भी इशारा काफ़ी है। आई मीन तुझे समझ गए हो ना मैं किस बारे गल कर रही हूँ, किन्ने टॉफी का पैकेट दिता सी। फिलहाल ना तो अगला जो गाना है वह मैं प्ले कर रही हूँ, वो दे रही हूँ, तुम ये इंजॉय कर लो। आतिफ असलम की आवाज़ के नेक्स्ट जो गाना है दूरी सही जाना है, तुम इंजॉय करो। एंड गाने तो दूरी वैसे ही बर्दाश्त नहीं है, सो गाना तुम सुन लो। And FM Rainbow te bane raho with me RJ Garima. Stay tuned.

सो जी इम्तिहान फिल्म तो गाना एंजॉय किया तुम आकाशवाणी फिल्म रेनबो से प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार एंड आर जे गरिमा थोड़े नाल इस प्रोग्राम के एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है उस तो बाद यह जो प्यारे प्यारे गाने की लड़ी है उन्होंने आप जारी रखा स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर

0: टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सोचिए, आप भी तैयारी कर लीजिए फिर क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम पंजाबी तड़का है ना, ता करके फिलहाल प्रोग्राम गीत बहार दे विच इस प्रोग्राम दा लास्ट ट्रैक मैं प्ले कर देनी हूँ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम दे विच मैं तुहानू मिलांगी। आरजे गरिमा नाल बने रहो ओनली ऑन 102.7 MHz EIR FM रेनबो।

102.7 MHz आकाशवाणी एफएम ब्रेनबोती प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद तड़के आप लगाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एफएम ब्रेनबो।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहे तो और अपना पंजाबी तड़का सो अगले गाने तड़का कौन लगवाएंगे आओ आपा जान लेने आ गल बात करके हेलो
1: सतिकाल मैम
0: सतिकाल जी कौन बोल रहे हो
1: मैं पाली बोल रहा प्याला जिला होशियारपुर
0: होशियारपुर तो पाली जी की हाल है तुम्हारा
1: मैम बहुत बढ़िया तुम सुनाओ जी
0: बढ़िया होशियारपुर का की हाल है
1: मैम बहुत बढ़िया जी मौसम पूरा ठंडा हो आज का
0: जी बिल्कुल वैसे भी तो
1: बूंदा
0: बड़ी
1: बांदी हो गई सवेरे
0: हाँ।
1: मौसम है बिल्कुल ठंडा
0: ठंडा चलो बहुत बढ़िया हो गया एंड गाना केड़ा सुनोगे
1: गाना ला दियो मैम डाक बंगला
0: ओके जी लखविंदर लक्की का गाना डाक
1: हाँ जी मैम
0: ठीक है जी प्ले कर रहे हैं थोड़े लिए पाली जी
1: थैंक यू मैम
0: ओके सो कितना बढ़िया गाना है प्ले किया इन्होंने मैनू बचपन की याद आ गई है सो गाना आप सुन लीए हाँ डांस करते होंगे सी गाने तो आप चाइल्डहुड मैमरीज होंगे ने पंजाबी गाने नाल भी बार बार रिपीट होंगे सके चैनल पर अवेले सोंगस सो चलो फिर मैं भी अपनी मैमरीज न थोड़ा जहा इंजॉय कर लवा चाइल्डहुड मैमरीज़ में इस गाने के थ्रू सुनते रहो प्रोग्राम पंजाबी तड़का आरजे गरिमा के नाल ऑन एफ एम रेनबो तुम भी कॉल लगा सकते हो स्टे ट्यून्ड

आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है जी, तो हाडा अपना होम स्वीट होम। वैसे ना आजकल बिल्कुल ऐसा दा माहौल नहीं बनता कि मीह आ गया है ते कपड़े लाओ जिहड़े सुकने पाए हुए ने ना भाई, कपड़े सुकने पाण तो पहला ही मीह आ जाता है, मशीन चो कड्डे ही नहीं होंदे सवेरे मीह आ जाता है, फिर सुकने किवें पाइए, मीह रुकन दा इंतजार करो। वैसे मीह दे फायदे भी बहुत हो जाते हैं, बिकॉज मीह दे मौसम विच ही तां जामुन जने उगदे ने। हाँ जी, मीहां दा मौसम ते जामुन ना आण एवें हो ही नहीं सकता। सो बचपन याद है जो जामुन खा खा के जिब पूरी जामनी हो जाती सी, तो फिर असी शीशे अगे खड़े होकर हसते सीगे एंड आपस कंपैरिजन करते सी कि इहदी जिब जिहड़ी है वह ज़्यादा जामनी हुई है। पर छोटा जामुन सिर्फ स्वाद ही नहीं सी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने के लिए। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, ICC T20 महिला विश्व कप के मुकाबलों की पल पल की खबर। भारत के सारे मुकाबलों का, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलों का अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर के FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz से।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अपना बिजनेस कर सको एंड कंज्यूमर्स वध तो वध बना सको। सो हर वड्डा जिहड़ा बिजनेस है ना, एक छोटी जी शुरुआत तो बनता है। आत्मविश्वास, लगन, निरंतर सीखन की जो एक इंट्रस्ट है घरेलू महिलाओं में जो होण, तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही सक्सैसफुल एंटरप्रनोर या बिजनेस वूमेन बना सकदियां ने। सो मैनू तो बहुत ज़्यादा इंस्पीरेशन मिली है। मैं भी कोई बिजनेस आइडिया, मतलब मेरे को बिजनेस आइडियाज़ बहुत ने, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। एंड कहते हैं ना कि जिन्हों वो की कहते हैं कि मंजिल मिलेगी, ठीक है, मंजिल मिलेगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऐसे गाते अगला गाना एंजॉय करो। एंड लवली लेडीज, होर बहुत सी गला लेके मैं आवांगी। यू स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो, होम स्वीट होम विच आरजे गरिमा है थोड़े नाल।

चला ट्रैवल ते जाके अपना तौलिया लबदा फिरे। आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी, तुहाडा अपना होम स्वीट होम। भी गर्मियां दीआं छुट्टियां होन, वीकेंड गेटवे होवे या पूरी फैमिली दा वेकेशन प्लान, सब तो वड्डा चैलेंज किदे सिर ते हुंदा है? ड्राइवर दा? ना जी ना, बच्चियां दा बिल्कुल भी नहीं। ऐ जिम्मेदारी हुंदी है घर दी होम मेकर दे सिर ते। बिकॉज़ जदों फैमिली ट्रिप प्लान हुंदी है ना, उदों मम्मी सिर्फ ट्रैवलर नहीं हुंदी है, वो ट्रैवल मैनेजर हुंदी है, पैकिंग एक्सपर्ट भी बन जाती है, डॉक्टर ते एमरजेंसी हेल्पलाइन सब कुछ हुंदी है। आई मीन सब कुछ। सो जे गल करिए आप कुछ स्मार्ट ट्रैवल ट्रिप्स की, ट्रिप्स की नहीं मतलब ट्रिप्स ते टिप्स दी, सो एक चेकलिस्ट जरूर बना लेना सारियां लवली लेडीज। मतलब अपने दिमाग ते बिल्कुल भरोसा ना करो, वैसे भरोसा साडे दिमाग ते किया जा सकता है, बट फिर भी आप मोबाइल या डायरी में एक चेकलिस्ट जी बना लीए, लाइक मोबाइल विच या कितने भी, लाइक कपड़े, चार्जेस, मेडिसिन, टिकट्स, आईडी प्रूफ, कैश की रखना है, ताकि रस्ते विच याद ना आवे कि हाय रब्बा चार्जर तो रह गया, है ना। सो एमरजेंसी पाउच जरूर रखो, जिसे मेडिसिन, बैंडेड, सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, ORS, पेन किलर है, सब कुछ हो, बिकॉज बच्चों बुखार या किसी हैडेक परमिशन लैके आनी नहीं है, एंड फिर उस तो बाद तो हानू कहते हैं। सो इस करके एंड कपड़े रोल करके पैक रखो, जिन्हें भी रोल करके पैक रखोगे मैक्सिमम कपड़े हो उन्ना वधिया, मतलब ट्रैवल एक्सपर्ट्स का हैक है, बाकी डिपेंड्स कि तुम की लैके चलो। एंड इस अलावा स्नैक्स तो पानी हमेशा याद नाल रखो, बिकॉज यू नो भुखा बच्चा GPS तो भी ज़्यादा लाउड सिग्नल दिता है। कुछ बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी स्नैक्स जरूर अपने कोल रखो, एंड ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स की फोटो जी है मोबाइल में जरूर सेव करके रखो, आधार कार्ड, होटल बुकिंग, टिकट्स, सब का स्क्रीनशॉट जो है रखना चाहिए थोड़ू, बिकॉज टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों ना आप चुकी है, चुकना ही चुकना है। सो अपने लिए भी कुछ चीज़ा पैक करो, बिकॉज फेवरेट लुक, फेवरेट बुक, फेवरेट लुक तो आप कैरी कर लवेंगे ट्रैवल पर जाके, एंड फेवरेट कोई भी चीज़ जो तुहानू ट्रैवल विच करना चंगा लगता है, ऑफकोर्स सॉरी सनस्क्रीन, लिप बाम, एंड छोटा जहा थोड़ा जरा स्किन केयर पाउच जरूर उन्होंने अपने नाल रखो, बिकॉज हिल्स से जाने तो उत्थे सन जो स्किन है, बिकॉज बिल्कुल आप सूरज के कोल जाने तो थोड़ा बहुत स्किन ते थोड़ा सनस्ट्रोक टाइप्स हो जाता है, मीनस की कहते हैं टैनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो जरूर सनस्क्रीन जरूर रखना, एंड सारे का सामान रखते रखते मेरा मतलब कहता अपना सामान ना भूल जाना, दैट इज इट। एंड बाकी जी इदा है कि पूरी दुनिया आप इकट्ठी करके चले जाने ट्रिप विच की हो जे इस चीज़ की लड़ पै गई या इस कपड़े की लड़ पै गई, तो कपड़े जिन्ने हो सके तो डे अनुसार एक एक कदों मतलब अपना नाइट सूट वगैरह इस तरीके रखो, मतलब पूरी दुनिया नहीं ला के जानी आप चार दिन के वेकेशन से। सो यस, ये काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी ने कुछ करने वेकेशन से, बाकी इंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप करते हैं वेकेशन तो आमद्या नाल ही नहीं, बल्कि वेकेशन तो वापसी आंदियाँ आंदियाँ ही फैमिली ग्रुप बना लें, बी फोटो पाओ, फोटो भेज दो भी फोटो, मतलब आप नहीं कहते कि आप बड़ा मजा आया, वी रियली मतलब वी हैड फन, आप कहने फोटो भेजो यार, जल्दी फोटो भेजन की करो आप स्टोरिया पाइए। सो एनीवेज फिलहाल कुछ यू नो टिप्स सके ट्रैवल नू लैके, एंड फिलहाल थोड़ी जी आप होर एक गल करांगे बहुत इंपॉर्टेंट, पर पहला अमरिंदर गिल कह रहे हैं कि थोड़ियां जी दिलदारियां आप लगा लीए। सो यू स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो प्रोग्राम होम स्वीट होम च बने रहो।

हो गॉड, ये शाम की तन्हाइयाँ और साथ में गम भी, ये कैसी शाम है भाई। ऐसी शाम जो है ना वो रुला जाती है, ऐसा मतलब ऐसी शाम होनी नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल। सुबह की अंगड़ाइयों या शाम की तन्हाइयाँ हो, हर तरीके का इमोशन, हर तरीके का जो मोमेंट है ना वो एना सदाबहार मिड डे मेलोडीज गाने विच जरूर जो है वो मिलता है सानू। अगला गाना जो है रफ़ी साहब की आवाज़ विच सुनिए, बने रहो मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल ऑन एफएम रेनबो। स्टे ट्यून्ड।

0: जी।
1: भाई गौर दी कसम, इतना ज्यादा इंस्पायर कर गया गाना। 1,25,00,000 की लॉटरी वो तो सच्ची निकल सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाए हुए ने इस गाने विच, एंड ख्वाब हमेशा सजने ही चाहिए। हाँ, शेख चली नहीं बनना चाहिए, पर ख्वाब तो दूर भी नहीं भजना चाहिए। आकाशवाणी एफ एम रेनबो के प्रोग्राम चल रहे जी, थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज आर जे गरिमा के नाल। एंड अजकल हर कोई वेकेशन तेरा पहाड़ा विच ही पहुँचा हुआ है। मतलब मैं रिसेंटली मसूरी गई सी, मसूरी तो मतलब इन्ना ज़्यादा पावर पैक्ड जैम, एंड हर किसी भी पहाड़ किसी भी हिल स्टेशन पर चले जाओ यही हाल है। बिकॉज पहाड़ा का हुसन ही इन्ना खूबसूरत है, इन्ना ही प्यारा है कि हर कोई इन्होंने दिलकश नज़ारियों के लिए पहुँच जाता है, ठंडक लैन के लिए पहुँच जाता है। सो चलो फिर आओ आप थोड़ा अप्रीशिएट करिए पहाड़ा के हुसन न। लता मंगेशकर एंड सुरेश की आवाज़ के इन प्रोग्राम मिड डे मैलोडीज विद मी आर जे।

एंड हर किसी किसी भी पहाड़ किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, यही हाल है. बिकॉज पहाड़ा ना हुस्न ही है, ना खूबसूरत है, ना ही प्यारा है कि हर कोई ना दिलकश नज़ारियाँ दे ली पहुँच जाता है, ठंडक लैन दे ली पहुँच जाता है. सो चलो फिर आओ आप थोड़ा अप्रीशिएट करिए पहाड़ा दे हुस्न नू लता मंगेशकर एंड सुरेश दी आवाज़ दे विच इन प्रोग्राम मिड डे मैरिज विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन एफएम रेनबो. स्टे ट्यून्ड.

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना मिड डे मैरिज और ये पहाड़ों का हुस्न वाला गाना तो सी एंजॉय किया फ्रॉम राम तेरी गंगा मूवी एंड सच्ची मुची बहुत प्यारे पहाड़ उत्थे दिखाए हुए ने एंड मेरे तो लगता है उत्तराखंड के भी कुछ कुछ शॉट्स लिते हुए ने जो गंगोत्री तो पानी भरन दे लई जल भरन दे लई ऑफकोर्स गंगोत्री जो एक स्पॉट है उत्थों की जल भरन दे लई एक्टर जो है उत्थे जाता है सो इदा लग्या कि उत्तराखंड के पहाड़ जो ने उत्थे होने हैं सो अलग अलग लोकेशन से फिल्म शूट हुई सी पर what a movie it was and what an amazing song it was जिहड़ा कि हुणी हुणी आपां इंजॉय किया बाकी जी अगला गाना जो है तुसी इंजॉय करो एंड बिकॉज की है ना कि एक घंटे में जिन्ने प्यारे प्यारे गाने आपां सुन सकीए उन्ने मैक्सिमम आपां जरूर सुनांगे स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो

भाई गोलमाल तो हो जाता है, और आजकल तो वैसे ही की गई है। आप कहाँ गए तो फिर कहन के की बोल दे। सो एनीवेज, सबने बताए समझदार सारे ने। वेल जी, आकाशवाणी FM और रेनबो ते कुछ ही पल तक तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।

0: ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 1:40 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ 1:50 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रगट किया कि भारत 2047 के राष्ट्रीय टीचे तो पहला सिकल सैल बीमारी को खत्म कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि वंडन के पंजाब में यह प्रोग्राम 6 थावां ते कराया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून में होने वाली नीट UGC की मुड़ प्रीख्या तो पहले टैलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से अस्थाई तौर पर रोक लाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार परिषद में पाकिस्तान वालों जम्मू कश्मीर बारे इल्जामों रद्द करदिया कहा कि यह घरेलू चुनौतियों तो ध्यान भटकाने लिए दुष्प्रचार कर रहा है। तो भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जलमार्ग को पार करने के बाद गुजरात की दहेज बंदरगाह पर पहुँच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रगट किया कि भारत 2047 के राष्ट्रीय टीचे तो पहला सिकल सैल बीमारी को खत्म कर देगा। उन्होंने खून के इस जेनेटिक विकार बारे जागरूकता पैदा करने लिए खास करके आदिवासी भाईचारे में तालमेल वाले यत्न का सद्दा दिता। श्रीमती मुर्मू आज विश्व सिकल दिवस मौके मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एक राज पदरी समागम को संबोधन कर रहे सन। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद सन। राष्ट्रपति ने सारिया राज सरकारां ते अधिकारियों को अपील की कि वह इस बीमारी को हल्के विच ना लैन क्योंकि यह एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक फैलती है। उन्होंने कहा कि इस पूरी तरह खत्म करने लिए यतन किए जाने चाहिए ने क्योंकि यह इलाज योग है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2023 सिकल सैल अनीमिया के खात्मे लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत समय निर्धारित किए गए मुख्य टीचों में एक समूहक जान सी अते यह संतुष्टि की गल है कि यह टीचा निर्धारित समय तो पहला प्राप्त कर लिया गया है।
2: एनीमिया मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: इस समागम दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकल सैल अनीमिया 2047 के खात्मे लिए राष्ट्रीय मिशन तहत स्थापित एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा भी किया। कबायली मामलों अनुसूचित जाति भलाई डॉक्टरी शिक्षा जन सेहत और आयुष समेत वख-वख विभागों ने सिकल सैल मरीजों की लागू की जा रही सेहत सेवाओं जागरूकता मुहिम और भलाई योजनाओं बारे जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो अपने गृह राज उड़ीसा के 2 दिन दौरे पर होंगे। वह अज दोपहर बाद मयूरभंज जिले के दंडपोस हवाई अड्डे पर पहुँचे। राष्ट्रपति इलाके में सेहत संभाल बुनियादी ढांचे और जनतक सेवावों को मजबूत करने के उद्देश प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि वंडनगे। इस योजना नाल देश भर में रोज़गार के 15 लाख मौके पैदा हुए हैं। किरत ते रोज़गार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 शुरू हुई इस योजना तहत 63 लाख तो वध कामे रस्मी कार्यभार में शामिल हुए हैं जिन्हें वो लगभग 30% औरतां ने। यह योजना कर्मचारियों ते मालकां दोवां नूं रस्मी अर्थव्यवस्था में हिस्सा लैण लई उत्साहित करन लई तैयार की गई है। इस योजना तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारी 15000 रुपए

0: रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम चल रहा सी मिड डे मैरिडीज आरजे गरिमा दे नाल, एंड फिलहाल प्रोग्राम दा लास्ट ट्रैक प्ले करके थोड़े तो अलविदा ले रही हूं मैं, बिकॉज फिलहाल अज दा तुहाडे नाल मेरा अज दा सफर बस इन्ना ही, सवेरे 10 बजे तो लैके हुण 2 बजे तक दा, फिर किसी दिन मिलांगे, बट फिलहाल ना मिड डे मैरिडीज दा लास्ट ट्रैक तुसी प्ले मैं प्ले कर रही हूं, तुसी इंजॉय करो, एंड अपना रखो बहुत सारा ख्याल, अपने आप रखो बहुत सारा प्यार, हंसते हंसते रहो, सुनते रहो एफएम रेनबो।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे ज़रिए दोस्त इस वेले FM रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए हैं। हुण तो कुछ समय पहलां दोस्त प्रोग्राम सुन रहे सी मिड डे मेलोडीज़ अपनी RJ दोस्त गरिमा दे नाल। रेनबो की कड़ी के मुताबिक इस वेले दोपहर के 2 बज चुके ने। हुण तो कुछ ही पलों 'च तुसीं सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है
2: जी।
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को जी। तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन

0: काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। यह झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओ, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओ, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओ, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए।

ये देख, उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख, सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी।

ने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे 4 गुना लंबा चौड़ा।

इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था। मैं सोचने लगा,

0: मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। ओह, ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
4: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। रेडियो डॉक्टर में हम आपके लिए विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े विशेषज्ञ यानी डॉक्टर को इस प्रोग्राम में लाते हैं, जहां आप उनसे सीधा संपर्क करें और अपनी समस्या उनसे शेयर करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: हमारा जो आज का विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन, यानी कि महिलाओं में अवसाद और चिंता की समस्या जो है, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम आपके प्रश्नों का और आपके सवालों का, आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे पलक मुचल की आवाज में। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, जिन लोगों ने देर से रेडियो खोला है, कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता, और अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन। हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो मनोचिकित्सक हैं दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, मैसेजेस भी आने लगे हैं, कुछ ऐसा ही विषय है आज का, लेकिन अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं नवीन प्रीत विहार से, तो उनका प्रश्न हम सुन लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी नवीन जी, डॉक्टर साहब आपको सुन सकते हैं और आप अपना प्रश्न पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, नवीन बोल रहा हूँ मैं।
2: हाँ, बोलिए।
1: मैं
2: नवीन जी,
1: अपनी मदर को लेकर आपसे कुछ बात करना चाह रहा था।
2: हाँ जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब, मेरी मदर को काफी टाइम से 5-6 ईयर से कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एज लाइक कभी उन्हें किसके बैक पेन होता है, कभी उनके हार्ट में कुछ इशू हो जाता है, कभी उनके हेडेक होने लग जाता है। तो बहुत मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, स्पाइनल इंजरी से कराया बैक का, और आफ्टर दैट हार्ट के लिए भी उनका ट्रीटमेंट चला। तो लास्ट मेरे को हार्ट वाले डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इनको एंजाइना अटैक्स होते हैं अगेन एंड अगेन। तो अभी उनको एज पर टाइम तो पैक्टिल वगैरह हम लोग दे देते हैं, बट उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए?
2: नहीं, उनको डॉक्टर ने क्या बोला, एंजाइना अटैक्स होते हैं कि एंग्जाइटी अटैक्स?
0: एंग्जाइटी अटैक,
1: अटैक्स टाइप होते हैं जी, बिल्कुल।
2: कि अगर उन्होंने एंजाइना बोला है तो एंजाइना तो बेसिकली हार्ट का इशू होता है।
1: ओके।
2: तो अगर अगर एंजाइना है तो उसको आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एंग्जाइटी इश्यूज देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 4 या 5 साल से उनको दिक्कत है, कई जगह दिखाया
1: जी।
2: तो अगर एंग्जाइटी की उनको समस्या है, जैसे घबराहट होती है, छोटी बातों को लेके वो चिंता करती हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है ना, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स, एक डर के आभास में रहती है कुछ बुरा ना हो जाए, अगर ऐसे इश्यूज उनको हैं, तो उनको आप किसी भी एक मनोचिकित्सक से दिखाइए, क्योंकि 5-6 साल से अगर इश्यूज हैं तो फोन पे उसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई मनोचिकित्सक को आप दिखा के आपके उसमें, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, एक बार उनसे कंसल्ट जरूर करिए।
0: थैंक यू नवीन जी। डॉक्टर साहब, हमें जो दूर दराज हमारे लिसनर सुन रहे हैं, जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनको ये बताएं कि एंग्जाइटी ये जो है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, क्या है एंग्जाइटी, क्या वो लक्षण है जिससे कोई महिला ये जान पाए कि शी इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी,
2: है ना। देखिए, एंग्जाइटी या साधारण शब्दों में हम कहें घबराहट, ठीक है, या चिंता। जब भी हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होती है, तो जबकि उस चीज का कोई वास्तविक आधार नहीं होता,
0: अच्छा,
2: तो इस चीज को हम एंग्जाइटी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी घबराहट हम कहें हमारे लक्ष्य को प्राप्ति और सफलता के लिए जरूरी
0: है जी।
2: अगर हमको एग्जाम के प्रति एंग्जाइटी नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे नंबर लाएंगे। पर अगर यही सारी चिंताएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जरूरत से ज्यादा हो जाएं, ज्यादा समय तक रहें, तो इसकी वजह से हमारे हमारे जो एक पारिवारिक जीवन पे, हमारे सामाजिक जीवन पे, हमारे आर्थिक जीवन पे इसके दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं, तब ये एक चिंता का रोग या एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है।
0: ओके, तो क्या एंग्जाइटी में गुस्सा भी आता है?
2: देखिए, एंग्जाइटी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सबसे कॉमन लक्षण जो हम कहते हैं कि घबराहट होना, दिल का तेजी से धड़कना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये जिसे हम कहते हैं चोकिंग सेंसेशन होनी, पसीना

0: आना, हाथ पैर कांपना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, सर में दर्द होना, हाथ पैरों में कहते मसल एक सोना, मसल हमेशा स्टिफ रहती हैं।
1: ओके,
0: तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के। जरूरी नहीं कि हर सिम्टम हर किसी को हो, पर अक्सर अगर ये सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति को दो हफ्ते या उससे ज्यादा है, कुछ महीने तक रहते हैं, तो हम कहते हैं उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। देखिए, जिस तरह से हम कहें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उदासीनता, ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी घबराहट भी होगी, कभी ना कभी उदासीनता भी होगी।
1: जी जी,
0: तो ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं, पर अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाएं,
1: जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या,
0: जरूरत से ज्यादा का
1: दिन, 15 दिन,
0: हाँ, तो देखिए जैसे उदासीनता या डिप्रेशन, अवसाद के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स दो हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और उससे हमारे सामाजिक और नॉर्मल जीवन में असर डालने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का रोग है। नॉर्मली मान लीजिए हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुरूप हमारे रिजल्ट ना आए, तो एक आध दिन हर किसी को थोड़ा सा उदासीनता होता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के अनुसार वो नॉर्मल हो जाता है। पर अगर ये सिम्टम्स डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमेशा उदासी रहना, किसी भी चीज में जिसको व्यक्ति का पहले बहुत मन करता था, जिस चीज में उसको इंटरेस्ट रहता था, अब उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता, भूख नहीं लगती है, चीजों में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, एक शारीरिक कमजोरी, एक थकान सी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी इतने नेगेटिव कि मरने तक के विचार आने, चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, चीज़ों में फोकस नहीं कर पाना, नींद ना आना या अत्यधिक नींद, ज़्यादा नींद आना, अगर ये है ना, हमेशा जिसम कहते हैं शरीर में दर्द, सर में दर्द, पेट फूलना, और ये सारे सिम्टम्स दो हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं, इनमें से कोई चार सिम्टम्स, तब हम कह सकते हैं कि उसको उदासी का रोग या अवसाद का रोग हो सकता है।
1: ओके, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है एसएस गुप्ता जी का रांची से, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मेनोपॉज में डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों होते हैं।
0: देखिए, ऐसा तो नहीं कि मेनोपॉज में एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक फीमेल में मेनोपॉज के दौरान इनके होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर फीमेल को ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा जब हार्मोन लेवल थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं, तो काफी फीमेल्स में चिड़चिड़ापन, उदासी या एंग्जाइटी के सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, और काफी केसेस में ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में जब जरूरत से ज्यादा होते हैं, तो एक मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ सकती है।
1: एक और मैसेज आया है प्रकाश जी का, दिल्ली से। प्रकाश जी, आपने जो मैसेज हमें लिखकर भेजा है कि यू वांट टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जायटी, तो अभी अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, एंड आई एम श्योर कि आप जरूर सुन पाए होंगे कि क्या है एंग्जायटी के लक्षण। तो एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं, आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन, महिलाओं में अवसाद और चिंता या जो घबराहट की बीमारी है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पर यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे एफएम रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, लिखकर भेजा है कि नाइस प्रोग्राम, ऑफ कोर्स इट इज। हमारे साथ जब स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए होते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए होते हैं। और सरस्वती देवी, 32 साल इनकी उम्र है और ये बांका बिहार से इन्होंने लिखा है। इनकी वाइफ है और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और घबराहट होती है, तो हम क्या करें? सांस, आपने कहा था कि धड़कनें तेज होती हैं या उस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो शायद ये सोच के इन्होंने लिख के भेजा है कि कहीं ये एग्जाइटी या डिप्रेशन के ही लक्षण ना हो।
2: देखिए, सांस लेने में दिक्कत होना और धड़कन तेज होना ये बहुत किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये हार्ट की बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, ये हमको कोई दमे की, अस्थमा की वगैरह के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इन दो लक्षणों पे कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से है। तो बेहतर होगा ये अपने किसी नॉर्मल फिजिशियन को दिखाएं, वो और चेकअप वगैरह कर लेंगे और कोई अगर दिक्कत नहीं है तो ये मनोचिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि माइग्रेन पीड़ितों के डिप्रेशन और एंग्जाइटी की चपेट में आने की आशंका अधिक होती है, हाउ फार इज इट ट्रू?
2: देखिए, ये एक सच है कि माइग्रेन जो पीड़ित हैं उनको थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आने के लिए।
1: ओके।
2: तो इसका कुछ कारण तो माइग्रेन की वजह से भी होता है,
1: सर दर्द रहता है,
2: उनकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाती हैं, है ना। और कुछ कभी कभार कुछ दवाइयां जो खाते हैं माइग्रेन में उसकी वजह से भी थोड़ी सी वो हो जाता है। और कई बार माइग्रेन अपने आप में भी कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस कर सकता है ब्रेन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा रहता है,
1: हो सकता है। मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि वेमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इज इट ऑल्सो?

0: हाँ देखिए, बेसिकली क्या है कि एक हम ये देखते हैं कि टिल प्यूबर्टी मेल और फीमेल में डिप्रेशन के जो रिस्क फैक्टर्स या जो प्रेवलेंस होती है वो नॉर्मल रहती है, पर प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में रिस्क थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ये WHO की या जो आंकड़े ये कहते हैं कि नॉर्मली 25% चांसेस रहते हैं एक फीमेल को अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी डिप्रेशन से ग्रसित होने में, यानी हर 4 में से एक फीमेल ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल डिप्रेशन उनको गुजर सकती है। और जनरली हम ये देखते हैं कि एज कंपेयर टू मेल्स डिप्रेशन फीमेल्स में दुगना होता है, जो प्रेवलेंस है उसकी डबल होती है एज कंपेयर टू मेल्स इन फीमेल्स।
1: एंड रीजन, कारण क्या हो सकता है? मे बी बिकॉज दे आर वर्किंग 24 आवर्स, इन द सेंस कि घर और बाहर दफ्तर जो भी है, जरूरी नहीं कि घर का जो माहौल है वो भी बहुत कंड्यूसिव हो या दफ्तर का जो माहौल हो वो भी बहुत कंड्यूसिव हो, तो इसका असर उनके जहन पर, उनके दिमाग पे।
0: देखिए इसके ना बहुत सारे कारण है। पहला जो एक कारण आता है वो एक हार्मोनल इश्यूज है
1: जी,
0: है ना। एक फीमेल को अपनी जिंदगी में जब प्यूबर्टी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: फिर एक पीरियड जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है

0: सेंस कि घर और बाहर दफ्तर जो भी है, जरूरी नहीं कि घर का जो माहौल है वो भी बहुत कंड्यूसिव हो या दफ्तर का जो माहौल हो वो भी बहुत कंड्यूसिव हो, तो इसका असर उनके जहन पर, उनके दिमाग पे।
1: देखिए इसके ना बहुत सारे कारण हैं। पहला जो एक कारण आता है वो एक हार्मोनल इश्यूज हैं
0: जी,
1: है ना। एक फीमेल को अपनी जिंदगी में जब प्यूबर्टी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: फिर एक पीरियड जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है उसमें उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर जैसे हम कहें चाइल्ड बर्थ एक ऐसा फैक्टर जिसमें चेंजेस आते हैं, और एक जब मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं तो उसमें भी ये चीजें होती हैं। तो एक बड़ा फैक्टर हार्मोन्स का होता है फीमेल्स में डिप्रेशन होने का। दूसरा, जैसे आपने ठीक सही कहा कि एक फीमेल्स को ना जो एक मेल्स के कंपैरेटिवली हम कहें कि थोड़ा सा स्ट्रेसेस से ज्यादा सामना करना पड़ता है, घर पे भी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उससे एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो वर्किंग फीमेल है तो उसको घर भी देखना है और उसको अपने वर्क का भी प्रेशर झेलना है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा, हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है एक मेल का और एक फीमेल का, है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनके सोचने की और उसकी क्षमता, एक है ना जो इमोशंस को व्यक्त करने की जो वो है, वो भी थोड़ा सा अलग होती है। तो
0: कई बार वो अपने इमोशंस को सप्रेस करती
1: है,
0: तो वो कहीं ना कहीं तो फिर उसका प्रभाव पड़ता होगा जी।
1: इन चीजों से हम कहते हैं कि फीमेल्स थोड़ा सा ज्यादा प्रोन होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स डिप्रेशन के लिए।
0: ओके, बहरहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल जो कि एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और हम आज बातचीत कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन इस विषय पे। ये एक मैसेज आया है सितेंद्र मिश्रा जी का इमलिया मानपुर सीतापुर से, और लिखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आप परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी माँ किसी भी तेज आवाज को सहन नहीं कर पाती हैं, क्या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर दिक्कत है आप मानसिक अवसाद की, आप क्या परामर्श देते हैं?
1: नहीं देखिए, किसी भी तेज आवाज को नहीं सहन कर पाना ये तो बहुत किसी काफी कारणों से हो सकता है ना। तो इसके लिए तो पहले आप एक बार ENT जो नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। कई कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आवाज तो जिसे हम कहते हैं ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो पहले एक बार उनसे चेकअप कराएं, अगर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर आगे कैसे उनको।
0: डॉक्टर साहब, हम अगर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने अभी बात की थी डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों की, तो क्या एंग्जाइटी ही आगे बढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है, या दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेज्ड इन द प्रेलिमिनरी स्टेज कैन बी टेकन केयर ऑफ?
1: नहीं देखिए, ऐसा है कि एंग्जाइटी एक अलग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन एक अलग डिसऑर्डर है। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो प्राइमरीली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, दिल का तेजी से धड़कना, ठीक है, सांस की दिक्कत होना, ठीक है, तो और हाथों का कंपन, हाथों में पसीना आना, एक चीजों की बुरी आशंकाओं को लेके हमेशा परेशान रहना, ऐसा होता है। और डिप्रेशन जो एक वो दूसरा है, वो एक जिसे हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर मतलब इसमें आदमी एक जिसे हम कहें उदासीनता में चला जाता है, इसको किसी काम में रुचि नहीं रहती, ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसा जरूर हो सकता होता है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी है या जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको साथ साथ एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स जरूर होते हैं, पर अपने आप में ये दोनों एक अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं।
0: ओके, यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। और एक बार फिर आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन विषय पर आज।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता यानी डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनीष कांडपाल जो मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि एंजाइटी कितने तरह का होता है।
2: देखिए, ऐसा है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो एंजाइटी है, वो कई तरह की बीमारी उसमें हो सकती है। जैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को यह है, तो उसमें वो उसको ना जो जो घबराहट है, जो चिंता है, ये हर किसी चीज़ों को लेके, जो एक डेली रूटीन की नॉर्मल सी चीज़ें हैं उनको लेके होती रहती हैं। उनको शरीर में जिसे हम कहते हैं बॉडी एक्स रहते हैं, सर में दर्द रहता है, उनका वजन गिरने लगता है, छोटी छोटी बातों पे वो घबराने लगती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हाथ में पसीना आना, दिल का धड़कन बढ़ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये रहती हैं। जबकि इनका कोई उनसे पूछा जाए तो एक पर्टिकुलर कारण नहीं बता पाती, हाँ इस वजह से परेशान हूँ, पर दिन भर लेकिन वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा घबराहट और चिंता में रहती हैं। और ये चीज़ें अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा रहे तो हम कहते हैं कि उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है।
1: इसका जो इलाज होता है डॉक्टर साहब, कहते हैं ऐसा कि बहुत लंबा इलाज होता है और अगर बीच में दवाइयां छोड़ दी जाएं या डिसकंटिन्यू हो गया

0: फिर आपको वहीं से वापस शुरू करना पड़ता है।
1: हाँ, एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, जैसे एक तो जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर हो गया, तो दूसरा एक एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है, बहुत तेज एंग्जाइटी होती है कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए, और उसके बीच में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको ऐसे रिपीटेड अटैक्स आते हैं जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक्स। तो ये पैनिक डिसऑर्डर हो गया। तीसरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं, वो होता है फोबियाज, है ना। उसमें किसी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर जिसे हम कहें वस्तु से या है ना पर्टिकुलर कार्य में से डर लगता है। तो जब भी वो व्यक्ति उन चीजों को फेस करता है तो उसको उस टाइम पे घबराहट होती है। तो ये भीड़ वाली जगहों से हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से हो सकता है, या बहुत से लोगों को हम कहते हैं किसी जानवर से, हाइट से, है ना। तो ये अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, तो ये होते हैं। और एक चौथे तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे आज की तारीख में WHO ने स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज में कर दिया है, वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस व्यक्ति को बहुत ही सीवियर ट्रॉमा सहन करना पड़े, है ना, अपना घर टूट रहा है, वो चीजें हो रही हैं, या कोई सेक्सुअल अब्यूज किसी के साथ हो जाए, तो ऐसे लोगों को वो चीजें, वो इश्यूज बार बार आते रहते हैं, वो हमेशा घबराहट रहते हैं, उसकी इमेजेस आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, उस चीज से वो आगे नहीं निकल पाता, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
0: एक ट्रॉमा होने के बाद ट्रॉमा जो समय होता है ना।
1: तो ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था इसके इलाज को लेके, देखिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन को लेके है ना, ये एक बड़ी भ्रांति है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इलाज, दूसरी एक भ्रांति है कि सिर्फ दवा ही खानी पड़ेगी। देखिए इसका इलाज दो तरह से होता है, एक तो हम जिसे हम कहते हैं बातचीत के जरिए या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, और दूसरा होता है दवाइयों के जरिए, ठीक है। ज्यादातर केसेस में दवाई बहुत लंबी नहीं चलती और ये बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको दवाइयां आजीवन खानी पड़ेंगी या दवाई खा के अब उसको आपकी उसकी लत लग जाएगी, पर हाँ ये जरूर है कि इसका पूरा कोर्स जरूर कराना होता है। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो उस बीमारी के दोबारा लौटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
0: और कहते हैं कि वहीं से फिर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 6 महीने ट्रीटमेंट कराई है और अभी ट्रीटमेंट और चलना था, और मान लीजिए वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट था, तो वो फिर अगेन वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट होगा?
1: नहीं, देखिए ज्यादातर केस में ऐसा तो नहीं होता। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा है किसी ने डिप्रेशन का इलाज उचित चल रहा है, उसको पूरा असर नहीं आ रहा, पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसने फिर दवा बंद कर दी और दवा बंद करके ये बीमारी फिर दोबारा उसी रूप में आ गई, तो हाँ उसको फिर पूरा इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, पेशेंट ठीक हो गया है, बहुत हल्के सिम्टम्स हैं, तो फिर पूरा नहीं, जितना बचा है फिर उतना ही इलाज से बात बन जाएगी।
0: ओके, अभी आपने घबराहट की बात की थी, तो एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है, कृष्णा देवी, उन्होंने अपना नाम लिखा है और उनकी उम्र 40 साल है। लिखती है, मेरे आधे सिर में दर्द रहता है और उसकी वजह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है। मैंने दवाई भी कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। हम गांव के रहने वाले हैं तो वहां पर मनोचिकित्सक कहाँ मिलेंगे? Oh God, this is, can be a problem.
1: हाँ देखिए, हम हमारे देश में ना थोड़ा सा जो मनोचिकित्सक नॉर्मल डॉक्टर्स की जो विलेजेस में पेनिट्रेशन उतनी नहीं है, लेकिन जो ये चीज बता रहे हैं कि आधे सर में दर्द रहता है एक बार इनको या तो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ये माइग्रेन या वो दिक्कत ज्यादा लग रही है।
0: ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन विमेन, इस विषय पर डॉक्टर मनीष कांडपाल से। इस वक्त स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की अगर बात करें, ये तो हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, क्या कभी जैसे हमने अभी आपने कहा कि हाँ महिलाओं में कहीं ज्यादा मतलब दोगुना ये प्रॉब्लम पाया जाता है, तो कोई प्रिलिमिनरी स्टेज ऐसा हो जिसका ख्याल रखा जाए, या कुछ सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल के लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, बट देयर आर टाइम्स के उतना वक्त नहीं होता बड़े शहरों में, और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम शायद बड़े शहरों में ज्यादा है, आप सही इंसान है बताने के लिए, इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेसेस जहां पे आपको बहुत सारा वक्त रास्ते में नहीं देना होता कहीं पहुंचने के लिए। लोग NCRs में रहते हैं, वहां से ऑफिस आते हैं अपने, और वर्कलोड होता है महिलाओं को, दे एट टाइम्स फील दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन, एंड दिस फीलिंग इन इटसेल्फ इज not very good, you know, losing on things, तो ये सब का भी असर पड़ता है, तो क्या किया जाना चाहिए? You know, like lifestyle की मैं बात करूं या चीजों को कैसे accept करने की क्षमता जो होती है कि आप उसको मान लें, स्वीकार कर लें, लेकिन जब आप इसको मान लेते हैं,

0: स्वीकार करने लगते हैं तो कहीं से वो हारने की एक संभावना या सोच जो है वो आपके ऊपर तारी होने लगती है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन.
1: देखिए जैसा आपने कहा कि ये बड़े शहरों और गांवों की बात या छोटे शहरों को लेकर, देखिए हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में डिप्रेशन डायग्नोज ज्यादा होता है क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है और वो डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा ज्यादा आती हैं. देखिए तनाव बड़े शहरों में अपने अलग स्ट्रेसर्स हैं, जैसे आपने कहा अलग तरह की चिंताएं अलग तरह के तनाव में, छोटे शहरों में अलग तरह के तनाव है ना, रोजी रोटी को लेके, लाइट नहीं आ रही है, बहुत अलग इश्यूज हैं जो हमको पता भी नहीं. तो ऐसा कहना तो थोड़ा सा गलत होगा. हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में हाँ डायग्नोसिस थोड़ा सा जल्दी होता है क्योंकि लोग थोड़े से अवेयर हैं, फैसिलिटीज हैं,
0: वहाँ परिवार के लोग साथ हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चों को रेज करना है, यू नो मदर्स गो थ्रू अ गिल्ट कि भाई मैं बाहर हूँ बच्चा घर पे है.
1: देखिए ये तो है, अब देखिए हर चीज के अपने दूसरा जो आपने बताया कि लाइफस्टाइल में हम क्या करें कि थोड़ा सा हम डिप्रेशन में इस चंगुल में फंसे ही नहीं. देखिए सबसे पहली चीज हम ये मान के चलें कि जो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि डिप्रेशन हो गया मतलब कि वो आदमी मेंटली वीक है या उसके कैरेक्टर में कोई इश्यूज हैं. देखिए डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी है, जिस तरह के शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो मानसिक रोग भी एक बीमारी है. इसके कई कारण हो सकते हैं है ना, इसके जिसे हम कहते हैं एक बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल, इन तीन फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है जब एक किसी को कोई बीमारी होती है.
0: खासकर बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल
1: एंड साइकोलॉजिकल.
0: साइकोलॉजिकल
1: ठीक है. बायोलॉजिकल में बेसिकली उसका जेनेटिक मेकअप, हार्मोनल इश्यूज, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, उनकी कमी के कारण, तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आप गिना रही थी है ना कि स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस एट होम, सामाजिक फैक्टर्स ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में होते हैं उस आदमी का मेंटल मेकअप कैसा है. हर आदमी को देखिए जिंदगी में कभी ना कभी तनाव आएगा, वो उसकी कोपिंग स्किल्स या उसकी उस तनाव को झेलने की क्षमताएं डिटरमाइन करती हैं कि वो डिप्रेशन में जाएगा या उनसे उबर जाएगा. जैसे हमने आपने देखा होगा कि एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे फेल हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में, 10 के 10 तो डिप्रेशन में नहीं जाते है ना, उसमें से कोई इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि इवन सुसाइड तक करने की कोशिश कर लेते हैं और कुछ उससे कोप अप करके अगले साल अच्छे नंबर लाके उससे भी अच्छे नंबर लाते हैं. तो उस आदमी का जो मेंटल मेकअप है, उस आदमी का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो भी डिटरमाइन करता है कि इसको ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी होगी या नहीं होगी. तो इन तीन चीजों की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से डिटरमाइन होता है कि एक व्यक्ति या महिला को डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग होगा कि नहीं होगा.
0: ओके, यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और वापस जुड़ते हैं अपने लिसनर से.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल। तो चलिए वापस चलते हैं अपने विषय की ओर, जो हमारा आज का विषय है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन। डॉक्टर साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब ये जानना होगा कि आपने बताया कि इलाज में वक्त लगता है, इलाज होता है इसका, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और ये भी मिथ नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, चाहे महिला तो है ही, बच्चों को भी हो सकता है। और अब ये जानना बहुत जरूरी है आपसे कि इससे बचा कैसे जाए, क्या ऐसा करें जिससे इस तरह की परेशानी किसी को ना हो।
1: हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहली चीज जैसे हम कहते हैं कि एक बार डिप्रेशन हो जाए तो उसको थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में, और वो थोड़ा सा हुआ है जैसे हर चीज में अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम पहले से कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसी ले लें तो उससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन चीजें थोड़ा सा कम हो सकती हैं,
0: या आपके मर्जी के खिलाफ अगर आसपास आपकी चीजें

0: तो उसको सहन शक्ति आपकी ज्यादा हो या आप इग्नोर करने की क्षमता हो।
1: शक्ति, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले चीज़ जैसे हम जो हम कहते हैं कि ब्रेन में या हमारे शरीर में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है,
0: खान पान
1: खान
0: का।
1: पान का। तो सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि एक अच्छा खान पान जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक होल न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड है ना, और खाने का भी कोई रूटीन नहीं है, तो वो चीज़ें आपके मूड को और आपके उसको ज़रूर असर करती हैं। तो पहली चीज़ है खान पान। दूसरी चीज़ है कि हम देखते हैं कि एक्सरसाइज है ना, तो एक कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट्स हो, जब भी कोई आदमी एक एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करता है तो उसके ब्रेन में जो उसके फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, पर साथ में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, तो वो थोड़े से माइंड को रिलैक्स और मूड को एलिवेट करते हैं। तीसरी चीज़ है, आजकल हम जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम कहते हैं नशे की जो सेवन करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, चाहे वो धूम्रपान है, चाहे वो अल्कोहल हो, तो उससे भी हमारे है ना, नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि कोई टेंशन हुई तो आदमी सिगरेट पी ली,
0: हाँ,
1: थोड़े
0: उसको
1: टाइम के लिए
0: लगता है
1: वो,
0: वो कम हो गया
1: हाँ
0: उससे।
1: थोड़े टाइम के लिए वो रिलैक्स तो कर सकता है उसको, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी उसकी डिप्रेशन की प्रवृत्ति को और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को और बढ़ाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ हम हमें ये तो चीज़ होगी हमें नहीं करनी है, फिर चौथी चीज़ जो है हमें कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो प्राणायाम है ना, उससे इन चीज़ों में काफ़ी फर्क मिलती है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं गाइडेड इमेजरी वगैरह के, जो आपको उस एप्स के जरिए भी वो आपको गाइड करते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक को आपको कैसे करनी है और कितने समय तक करनी है। ये एक इश्यूज हो, ये हो गए। उसके अलावा दो चीज़ें हमने अपनी उसमें देखा है कि देखिए बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जैसे आपने खुद कहा कि हम थोड़े से गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड है ना चीज़ों को, वो चीज़ें थोड़ा सा हमको ज़्यादा हो गई हैं, तो उसके लिए हमको अपनी लाइफ में जैसे हम कहते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। ठीक है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा कैरियर है, हमारी फैमिली रिलेशनशिप है, उसको हमें टाइम ज़्यादा देना है, फिर बाकी छोटी छोटी जो हमारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम उसको कम देना है। सीधा सा एग्जाम्पल मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ कि मान लीजिए एग्जाम पेपर में आपका कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है ना, जो चीज़ें आपको आती नहीं है आप उसमें पहले शुरुआत में लग जाएंगे, जो चीज़ें आएंगी आप उसमें भी समय नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हमको अपनी रिलेशनशिप को, हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे वर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि ये इस फेज ऑफ लाइफ में दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, तो हमको उसमें अपने टारगेट सेट करें ताकि जो अनवांटेड, जो इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर वो छूट भी जाए तो इतना कोई इशू नहीं होगा। तीसरी चीज हम ये बताते हैं कि अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, हर की जिंदगी में वो स्ट्रेसर्स अलग अलग होंगे। एक सिंपल सा स्ट्रेस, अगर हमारी कम्यूटेशन बहुत दूर है, माने बहुत दूर से आते हैं, ट्रैफिक में फंसना कई लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी का स्रोत बन जाता है। तो बेसिकली हमको अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उस बेसिस पे हम अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उन चीज़ों पे बेटर एक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज है कि देखिए घंटे हम सबके पास 24 ही हैं, है ना, तो हमको अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं घंटों में जीनी है, तो हमको अपने को प्रायोरिटाइज करके वो हमको करना है। फिर एक चीज और हम देखते हैं कि अगर हम उन व्यक्तियों के संपर्क में हैं जो हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक आशावादी वो प्रदान करते हैं, अगर उनसे उसमें रहेंगे, हमारा सोशल सर्कल अगर वो रहेगा, तो हम डिप्रेशन या चिंता में जाने के हमारे चांसेस कम होंगे। तो एक हमारा एक अच्छा सोशल सर्कल भी हमको डिप्रेशन से या नेगेटिव थॉट से बचाता है। और एक आखिरी चीज है अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उन भावनाओं को दबाना शुरू करते हैं और हमको खुद ही नहीं पता लगता कि हम दबाते दबाते हमारा वो एक नेचर का पार्ट बन जाती है, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कोई भी हमारी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपकी माँ है, चाहे भाई है, चाहे फ्रेंड है, तो जिससे हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए।
0: कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू सप्रेस, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसका रिपरकॉशन नेगेटिव हो जाएगा, या और यू नो वोंट बी वेरी, यू वोंट फील लाइट एंड मे बी इट एनहांसेस योर प्रॉब्लम फर्दर।
1: देखिए अगर कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं जिसको आपको लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूं तो थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि वो पेशेंट ना एक डायरी लिखना शुरू कर दे, है ना, जैसे आपकी कोई भी इमोशंस है, कोई भी फीलिंग्स है, आप नेगेटिव हैं, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, आपको लगता है मैं उसको बताऊंगी तो मेरे बारे में एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं करें, रात को जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, वो एक डायरी में आप चाहे उसको एक पेज में आप लिख के देख दें, अगले दिन आप सुबह उसको पढ़ें।

0: उसमें 50% चीजें तो आप खुद ही रियलाइज करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और चाहे तो बाद में आप उसको फाड़ के फेंक दें, तो इससे आपके जो इमोशंस हैं वो इस तरह से वेंटिलेशन
1: हो जाएंगे। बिल्कुल, देखती हूँ कोई लिसनर कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से हमसे जुड़ने के लिए। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, अपना नाम बताएं।
2: मैं सीमा परवीन बात कर रही हूँ, सदरुद्दीन नगर, जिला बिजनौर से।
1: हाँ क्या सवाल है आपका सीमा?
2: मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है।
1: पढ़ाई करते वक्त सर में दर्द होता है?
2: जी।
1: पढ़ने का मन करता है?
2: जी
1: पढ़ाई में मन लगता है, ये भी तो बात है कि
2: पढ़ने मैम आपकी साफ आवाज नहीं आ रही।
1: आपको साफ आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। ये कह रही थी कि इनका पढ़ने समय में इनके सर में दर्द होता है।
0: तो अगर पढ़ने समय में दर्द होता है तो सबसे पहले एक आंखों का एक जांच करानी बहुत जरूरी है। कभी कभार आई साइट अगर वीक हो तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने बताया, अगर मन नहीं करता है, जबरदस्ती कोई पढ़ने पड़ रहा है तो वो भी
1: बिल्कुल उससे भी सर दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि किस तरह से आपके लाइफ स्टाइल में, आपके खान पान में, आपका खान पान बहुत पे ध्यान देने की जरूरत है। आप हरी सब्जियां खाएं, साग पत्तियां जो होती हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह खाएं, जिसका भी असर आपके जहन पे पड़ता है। एक्सरसाइज करें, आपने कहा कुछ एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, या योग ध्यान करें, तो इन सब चीजों का बहुत पॉजिटिव असर आपके दिमाग पे हो सकता है और आप इस तरफ जाने से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए। एनीथिंग एल्स विच यू वॉन्ट The listeners to know, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को बताया।
0: बस ये है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं तो उसको देरी ना करें, ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो अपने आसपास कोई भी आपको मनोचिकित्सक या काउंसलर है तो उससे कंसल्ट करें, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
1: ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।

अभी आप रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुन रहे थे और आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष कांडपाल, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, और हम बातें कर रहे थे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन विषय पर।

0: कार्यक्रम से संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें health@delhi.gmail.com पर लिख सकते हैं, अपने मैसेजेस अपने मेल्स हमें भेज सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: क्यों ना करा
1: कुड़िए करनी है दंगा साडा ता हो गया कंगा
0: झूठा
1: 200 विच पानी पै गया 200 विच पानी पै गया मैं इथे जोगा रह गया मैं इथे जोगा रह गया और बार ही सवारी कली कलैणी कलैणी।

0: हाँ भाई, कोई बिना टिकट तो ना होवे। रेनबो दी बस दे विच कोई बिना टिकट तो नहीं होना चाहिदा। भाई ओ कोई चढ़िया आउंदा आ, पता नहीं भाई की बेचूगा, पर मैनूं लगदा इन्हां तों पुछांगे कि अज की बेचण आए ने। बहुत सारे लोग अपनियां जो बणाईआं होईआं चीज़ां ने उत्थे बेच चुके ने जी। हैलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। कौन जनाब?
1: शुक्रिया, जतिंदर भास्कर बोल रहे हैं पायल तो जी।
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं जतिंदर जी। फिर कि शह लैके आओ अज रेनबो की बस च?
1: रेनबो की बस के लैके आया जी कंघे जी।
0: कंघे? क्या बात है जी। ये कंघे, वह कंघे जड़े करा देंगे दंगे है जी?
1: नहीं, घर ना अक्सर सुबह सुबह लड़ाइया ये होंगे। तू छेती कर अपने सरबा, मैं भी स्कूल जाना है, मैं भी ड्यूटी ते जाना। अक्सर कंघे पिछे लड़ाइया होंगे रहा।

एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ये आकाशवाणी है। श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो

0: भारतीयों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already. He's in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क। व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो।
1: या यू जस्ट कंटिन्यू।
0: इस योजना की अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों, और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये

0: एनकरेजमेंट होता है और yes. कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: yeah,
0: आती
1: people will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let the this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है
0: भारत सरकार जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
1: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिम्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का कुछ बेहतर करने का इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी 4 श्रम संहिताएं लागू

महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित

0: लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था।
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive,

0: incentive. When they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
0: Yes.
1: ये बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally in the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people beneficiaries get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people I think, or almost 700 people are seated over here right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं?
0: Yeah.
1: आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat

0: Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बोके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I am telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

0: two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोज़गार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद द अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे.
0: And now the welcome remarks.
2: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं.
0: श्री मनसुख मांडविया, द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट.

0: He walks to the podium to give a speech.
1: Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Protsahan Rashi vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, meri sahyogi mantri adarniya Shobha Karandlaje ji, video conference se विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख

0: जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़

0: तरीके की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
5: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
6: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
5: डाइस पर
0: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का

हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है।

हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक, अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का

उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है,

हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है, इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य

और अधिक अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो, या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी।

0: क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री, अन्य गणमान्य

0: अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 19 June 2026 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ 2026 ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो पता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 24 करोड़ रुपए की राशि वंडी। पंजाब च ये प्रोग्राम 6 थावां ते कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रगट किया कि भारत 2047 दे राष्ट्रीय टीचे तो बहुत पहला स्किल सेल बीमारी नू खत्म कर देवेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून नू नीट यूजी दी मुड़ परीक्षा तो पहला टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ते अस्थाई तौर ते रोक लाउण दे केंद्र दे फैसले नू बरकरार रखिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज पट्टी नू हड़ां तो बचाउण ते शाहकोट लोहियां खेतर च आवाजाई नू सुखाला बनाउण लई तुस्ती बन लिंक सड़क दा नींह पत्थर रखिया। पंजाब सरकार वल्लों बकाए वसूलण लई वैट ते जीएसटी डिफाल्टरां दीआं जायदादां दी नीलामी दी शुरुआत। मोहाली ते जलंधर च नीलामी राहीं वड्डा मालिया वसूलिया। महिला ते बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि सूबा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा नू यकीनी बनाउण लई कीते जा रहे उपरालिया तहत 5 बंगलादेशी बच्चों नू वतन भेजिया। भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट ने अग्निवीर सिक्ख्या ते हुनर विकसित राही समर्थ बनाउण लई अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल समझौते ते दस्तखत कीते। पंजाब च नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ते चंडीगढ़ पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन तहत खरड़ तो एक प्रैक्टिस कर रहे वकील नू नशीले पदार्थां समेत गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस वल्लों सूबे च

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने हरीश हाजर है जी एक बार फिर तो तुहानू एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट दे सफर ते ले जान दे ले। और साडा ये सफर जो रात 11 बजे तक चलेगा और इस सफर दा आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। मेरे सारे लिसनर्स जो इस वेले मेरी आवाज़ नू सुन पा रहे ने, कुछ अपने घर तो गड्डियां दे विच सवार हो के अपने घर जा रहे ने और कुछ सफर ते निकले ने और सोहणे सोहणे मौसम दा आनंद मानण दे लई है कि नहीं। और शाम मदहोश होनी चाहिए है, मस्ती भरी होनी चाहिए है। और इसे कोशिश दे विच हरीश आ जुटिया तुहाडे नाल 102.7 FM रेनबो ते, जिथे प्रोग्राम होएगा साडा अज दा बड़ा खास। और साडी ये महफिल जिस विच अलग अलग प्रोग्राम्स तुहानू एंटरटेन करनगे और हरीश उन्हां प्रोग्राम्स नू तुहाडे मुखातिब करेगा। चलो फिर स्टार्ट कर दिया साडा अज दा ए शो। और दोस्तों इस सफर दे विच साडा पहला पड़ा फिल्मी दुनिया, और फिल्मी दुनिया साडा शो जिस विच फिल्मां दीआं कहानियां, फिल्मी एक्टर्स दीआं गल्लां, फिल्मी गाने तां तुहानू सुणाए जांदे ने। खास करके वो एक्टर्स, वो कलाकार जो असी वड्डे पर्दियां ते देखदे आं, उन्हां दी निजी लाइफ बारे और किवें वो सक्सैसफुल हुंदे ने, किवें उन्हां नू फिल्मां मिलदियां और किहड़े किहड़े डायरैक्टर्स, एक्टर्स और को आर्टिस्ट दे नाल काम करके वो अपनी बुलंदी नू हासिल करदे ने, अपनी मंजिल नू पाउंदे ने। बहुत सारे आर्टिस्ट दी असी गल कीती करदे आं और करदे रहांगे। और अज जिस आर्टिस्ट दी गल करांगे ना, वो आर्टिस्ट सारयां दे दिलां दे विच वसिया होया। और उसकी जदों फिल्म असी परदे ते वेखदे आ ना, किसी भी फिल्म दे विच जदों असी उसनू वेखदे आ, असी उसनू भुला नहीं पाते। बट वो आर्टिस्ट कमाल दा सी और भुलदे असी इसे करके नहीं है क्योंकि उसकी अदाकारी ही सब तो जुदा सी और सब तो वखरा अंदाज सी उस एक्टर दा। बट किसी कारण करके, सिचुएशना करके और कुछ इदां दियां, शायद उस दी लाइफ दे विच इदां दियां सिचुएशन क्रिएट हुई कि वह साढ़े सारियां तो अलग होया, जुदा हो गया। कित्थे गया इहदे बाबत कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है। शायद मेरियां गल्लां तो तुसी अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं किस एक्टर की गल कर रहा। वो कमाल दा अदाकार, हैंडसम हंक अपने टाइम दा, और जिन्नियां फिल्मां दे विच कम कीता उहदे विचों जेकर असी कैलकुलेशन करिए तां ज़्यादातर फिल्मां जिहड़ियां उह सुपर हिट रहियां। मैं गल कर रहा चलो नाम तो तुहानू दसांगा मैं जरूर और उसकी कहानी भी तुहाडे नाल शेयर होएगी जरूर और उस दी फिल्मां दे गाने भी मैं अज प्ले करन वाला। तो चलो इस गाने तो शायद तुहानू अंदाजा लग पावे कि मैं किस एक्टर की गल कर रहा। वापस आने और गल करदे उस बा कमाल एक्टर की।

0: सपने
1: रेनबो ते हरीश नाल तुहाडे और शो इंजॉय कर रहे हो तुसी मेरे नाल फिल्मी दुनिया और असी गल कर रहे हैं राज किरण दी। ओ अल्टीमेट एक्टर जो किसे कारण और जदों किसे शख्स नू लाइमलाइट दे विच टॉप ते जगह मिली होवे बट उस टॉप वाली जगह तो हटा के उसनू थल्ले जगह दिती जावे ता किते ना किते माइंडसेट और उस दी सोच नू बहुत तगड़ा झटका लगदा। यही झटका राज किरण जी नू उस दौरान लगा सी 1975 दे विच जदों पहली फिल्म उन्होंने की थी बीआर इशारा दे नाल और वो फिल्म सी कागज़ की नाव और ए फिल्म दे विच उन्हां दी एक्टिंग नू सराया गया और उन्हां दी जिवें कि मैं पहले कहा कि अट्रैक्टिव उन्हां दी एनर्जी सी और इसे करके उन्हां नू बाकी डायरेक्टर्स ने भी अप्रोच किया। अगली 1977 दे विच एक फिल्म सी किस्सा कुर्सी का। पहला इस फिल्म नू कोई होर एक्टर कर रहे सी, राज बब्बर जी इस फिल्म दे विच सी पहला, बट किसे कारण ये फिल्म जड़ी है बनी, बनन तो बाद रिलीज़ ही नहीं हुई और किया जाता है कि इस फिल्म नू लैके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई और उन्हां कॉन्ट्रोवर्सीज़ तो बाद किया जाता है कि इस फिल्म नू दोबारा रीक्रिएट किया गया और उस फिल्म दे विच एक्टर सी यानी कि लीड एक्टर दे विच सानू नज़र आए ये हुई राज किरण साहब। और राज किरण साहब नू तुसी इस फिल्म दे विच वेखो तां क्यूट जिहा वो चेहरा और वड्डे वड्डे घुंघराले वाल उन्हां दे और ये एक्टर अल्टीमेट सी और क्लीन शेव नहीं सी, इन्होंने मुछ रखी हुंदी सी और उन्हां दे चेहरे ते वड्डे वड्डे करली हेयर और नाल मुछ, ये उन्हां दा जुदा अंदाज सी बाकी हीरोज़ नालों। अमिताभ बच्चन की गल करिए या होर काफ़ी उस दौरान जेकर दिलीप साहब की गल करिए या धर्मिंदर साहब की गल करिए बहुत सारे होर बड़ी लंबी लिस्ट है और सारे एक्टर जड़े सी ज़्यादातर क्लीन शेव्ड उस दौरान, बट राज किरण नू ए जुदा अंदाज जचिया, उन्हां दी लुक सब तो वक्री सी और एक्टिंग का स्टाइल भी वक्रा सी। और किस्सा कुर्सी का जदों 1979 दे विच रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने भी उन्हां नू लाइमलाइट दे विच लिआंदा, फिल्म लोगों तक पहुँची और उस तो बाद 1980s दे विच कहिंदे ने कि इन्हां दीआं लगातार 8 फिल्मां जिहड़ियां ने ओह रिलीज़ होईआं सी, जिहड़ियां फिल्मां सी महाराजा, मान अभिमान, मनोकामना, नजराना प्यार का, पतिता, साजन मेरे मैं साजन की और ये कैसा इंसाफ। ये सारियां फिल्मां जिहड़ियां सी लगभग 80s दे विच जदों रिलीज़ होईआं ज़्यादातर फिल्मां सुपर हिट होईआं और इसे करके राज किरण जड़े ने उस वेले स्टार्स दी लिस्ट दे विच आके खड़े हो गए। एक अननोन शख्स जदों इंडस्ट्री दे विच आउंदा है उसकी ख्याति वधदी है, उसकी प्रसिद्धि वधदी है, उसनू काम मिलना स्टार्ट हुंदा है, स्टार्ट नहीं हुंदा मतलब धड़ाधड़ धड़ले दे नाल उसनू काम मिलदा। लगातार 8 फिल्मां उस दीआं 80s दे विच रिलीज़ हो जांदियां ने और सारियां फिल्मां सुपर हिट भी हो जांदियां ने और ये चीज़ जड़ी है उस तू भी किसी ख्वाब तो घट नहीं लगी होनी राज किरण साहब नू और जदों उन्हां नू ये ख्वाब सच हुंदा होया नज़र आया तो उन्हां नू लगा कि वाकई स्टार बन चुके सी और इंटरव्यूज़ होनिया, फैन फॉलोइंग होनी, लोगों का पसंद करना, आन जान वेले ऑटोग्राफ्स देना, ये सारा सिलसिला जड़ा वो स्टार्ट हो चुका सी। 80s का दौर सी और इस दौर दे विच इदां दा उन्हां दे लई मतलब दौर शुरू होया जदों राज किरण, ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गरेवाल और होर नामी एक्टर्स दे नाल उन्होंने काम किया और ये जिन्हां एक्टर्स की मैं गल की इस वेले कर्ज़ फिल्म उन्हां नू मिली सी किस्सा कुर्सी को बाद और इस फिल्म दे विच मतलब राज किरण का पुनर्जन्म ऋषि कपूर मोंटी के किरदार दे विच सानू नज़र आए सी और ये फिल्म तो बाद उन्होंने पूरे मुल्क दे विच जबरदस्त वाली जिहड़ी पछाण हुंदी है ना वो मिली सी और उन्हां दी एक्टिंग नू इस विच भी सराया गया सी और इस तो बाद उन्होंने बहुत सारे होर रोल्स कीते, साइड नहीं लीड दे विच रोल्स कीते।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 24 करोड़ रुपए की राशि वंडी। पंजाब च ये प्रोग्राम 6 थावां ते कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रकट किया कि भारत 2047 के राष्ट्रीय टीचे तो बहुत पहला स्किल सैल बीमारी नो खत्म कर देवेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून नू नीट यूजी दी मुड़ प्रीख्या तो पहला टैलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ते अस्थाई तौर ते रोक लाने दे केंद्र दे फैसले नू बरकरार रखिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज पट्टी नू हड़ां तो बचाउण ते शाहकोट लोहियां खेतर च आवाजाई नू सुखाला बनाउण लई तुसी बन लिंक सड़क दा नीह पत्थर रखिया। पंजाब सरकार वालों बकाए वसूलन लई वैट ते जीएसटी डिफाल्टरां दीआं जायदादां दी नीलामी दी शुरुआत। मोहाली ते जलंधर च नीलामी राहीं वड्डा मालिया वसूलिया। महिला ते बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने कहा सूबा सरकार ने बच्चियां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई कीते जा रहे उपरालियां तहत 5 बंगलादेशी बच्चियां नूं वतन भेजिआ। भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट ने अग्निवीर सिक्ख्या ते हुनर विकास राही समर्थ बनाने लई अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल समझौते ते दस्तखत कीते। पंजाब च नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NSB चंडीगढ़ जोनल यूनिट ते चंडीगढ़ पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन च खरड़ तो एक प्रैक्टिस कर रहे वकील नूं नशीले पदार्थां समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस वालों सूबे च रेलवे बुनियादी ढांचे नूं निशाना बनाउण च शामिल पाबंदी शुदा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स दे 2 कारकून मलेशिया तो डिपोर्ट करवा के गिरफ्तार। BSF ने अमृतसर सरहद तो एक मुलजम नूं एक AK-47 राइफल ते असले समेत कीता काबू। एसएनएफएम न्यूज हेडलाइंस हुण तो कुछ कु पल बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे।

0: 107 FM रेनबो ते सुले तुसी हरीश दिनाल जुड़े हुए हो। प्रोग्राम चल रहा है जी पब्लिक मंच और साडे नाल साडे लिसनर्स जुड़ रहे ने, गल करदे हां उनदे नाल। हेलो,
1: हां जी नमस्कार सभी।
0: नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो जी?
1: हां सर, सुदेव सिंह बोल रहे हैं।
0: सुखदेव जी, प्रोग्राम चल रहा पब्लिक मंच और रोड सेफ्टी की गल कर रहे हैं। तुसी ये दसो कि जदों तुसी घरों निकलते होंगे, मान लो तुसी दो पहिया वाहन बाइक उत्ते जाने हो, स्कूटी जाने हो, बच्चों नूं तां नाल बिठाते होंगे है ना?
1: हाँ जी सर जी।
0: तो बच्चों नूं हैलमेट पाने हो?
1: सर जी मैं वैसे रोड के उपर चलता बहुत घट है, मेरे मन च इदा डर रहा क्योंकि मेरे ना मिसिज 2020 एक्सीडेंट पूरे हो गए थे।
0: ओके सॉरी जी।
1: बाकी गल सर जी यह है कि हुण ते बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंदे लग सके, अही देखते रहने हैं।
0: बिल्कुल,
1: बड़ा मन मतलब दुखी हुंदा।
0: सुखदेव जी की लगदा कि जेड़े हादसे वापर रहे है सड़कां ते, इहदा कारण की है एक्चुअली?
1: सर जी कारण ते बहुत सारे हो सकते हैं, पर सब तो वड्डा कारण है कि साडा मन जिहड़ा ना वो अपना मन ही साडा मतलब उत्थे नहीं हुंदा जिथे जेकर असीं ड्राइविंग कर रहे हैं ते साडा मन ते उस चीज दे विच होना चाहिए ना।
0: मतलब जेकर असीं सड़क ते
1: बहुत सारे हो सकते हैं जिदा तेजी भी हैगी है, जां असीं साडी अनगहली है, असीं देख के नहीं चला रहे हैं, जां काहली कर रहे हैं, कितने ना कितने इंसान दी विच गलती ते है कितने ना कितने।
0: हाँ बेकर, जेकर असी साडा ध्यान किते हो रहा, मान लो दिमाग दे विच कोई टेंशन चल रही है, कोई भी किसे दी कही हुई गल जिहड़ी है, या ऑफिस तो बंदा निकलिया बॉस दे नाल, या ऑफिस दे विच कोई कहा सुनी हुई है ना, वह चीज़ा दिमाग दे विच घूमदियां, बट वो जदों रोड ते चल रहे हैं तो वो नियम भंग नहीं होने चाहिए है ना? वह जिहड़े
1: नियम ते जेकर असी नियमां विच भी रह के चलाउणे हैगे आ पर दूसरा कोई विच साडे मार जांदा हैगा फिर भी मुश्किल हो जाती है, पर चलो सानू खुद ते मतलब नियमों की पालना करनी
0: चाहिए। हुण जेकर असी जा रहे हैं, असी कन्ना दे विच जेकर उच्ची आवाज दे विच एयरफोन्स लगाए हुए है है ना, तां पिछे नाल या कौन जा रहा है, कित्थों हॉर्न वज रहा है, की है ना, जेकर साइड मिरर भी नहीं साडे लगे बाइक ते, तां ओह बड़ियां सारियां चीज़ां जिहड़ियां ना ओहदे विच कम करदियां कारना दे विच। बहुत सारी चीज जुड़ जांदी
1: है ना, भी प्रॉब्लम है ना हुण बाहरले देशां च देखिए ते कैमरे जगह जगह पर लगे, साढ़े इधर मतलब कोई इदां दा सिस्टम नहीं, इन्ना वधिया नहीं है। जे रोड ते कोई किसे दा कोई नुकसान हो जांदा ते उहदे दा उहदा ही हो जांदा, उहदे लई दुख दा कारण बन जांदा। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੇਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ 0181 ਲਾ ਕੇ 23 42 174 ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੇੜਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 24 करोड़ रुपए की राशि वंडी। पंजाब च ए प्रोग्राम 6 थावां ते कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले सालों च भारत के नौजवान विश्वव्यापी विकास नवीनता ते उद्यमता नूं वधाउण च सब तों अगे होणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रगट किया कि भारत 2047 के राष्ट्रीय टीचे तो बहुत पहला स्किल सेल बीमारी नूं खत्म कर देवेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून नूं नीट यूजी की मुड़ परीक्षा तो पहला टैलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से अस्थाई तौर पर रोक लाने के केंद्र के फैसले नूं बरकरार रखा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज पट्टी नूं हड़ां तों बचाउण ते शाहकोट लोहियां खेतर च आवाजाई नूं सुखाला बनाउण लई तुसी बन लिंक सड़क दा नींह पत्थर रख्या। पंजाब सरकार वल्लों बकाए वसूलण लई वैट ते जीएसटी डिफाल्टरां दी जायदादां दी नीलामी दी शुरुआत। मोहाली ते जलंधर च नीलामी राहीं वड्डा मालिया वसूलिया। महिला बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने कहा है कि सूबा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने किए जा रहे उपराले तहत 5 बंगलादेशी बच्चों वतन भेजा। भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट ने अग्निवीरां नूं सिख्या ते हुनर विकास राही समर्थ बनाने लई अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल समझौते ते दस्तखत किए। पंजाब पुलिस वालों सूबे च रेलवे बुनियादी ढांचे नूं निशाना बनाने से शामिल पाबंदीशुदा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 2 कारकून मलेशिया तो डिपोर्ट करवा के गिरफ्तार किए गए। बीएसएफ ने अमृतसर सरहद तो एक मुलजम नूं एक AK-47 राइफल ते असले समेत काबू किया। एसएनएफएम न्यूज हेडलाइंस। हुण तो कुछ कु पलां बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने। उम्मीद है कि तुसी बिल्कुल ठीक हो। महाराज हरीश नाल है तुहाडे और 7 बजे दा स्टार्ट होया ए सफर 9 बजे तक पहुंच गया। और 9 बजे की हुंदा है आई नो मेरे लिसनर सब कुछ जानते ने। और ए सफर जड़ा दिल तो दिल तक वाला हुंदा है और ए दिल तो दिल तक पहुंचण वाली जड़ी गलबात है ना उसका नाम है हाँ जी दिल चाहता है। और दिल इस वेले तुहाडा चाह रहा है कि छेती छेती हरीश अपनी गल्लां नू थोड़ी जी ब्रेक ला के फटाफट मैसेज पढ़े और जड़े मैसेज भेजे गए ने लिसनर्स दे वल्लों उन्होंने पढ़े और जो लिख के भेजा बिल्कुल तुहानू पता है लिख के की भेजना। लिख के भेजने ने बॉलीवुड एंड पॉलीवुड दे सोंग्स जो मेरे तक पहुँचे व्हाट्सअप जरिए 9855101027 साडा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुसी व्हाट्सअप करने हैं गाने अपने फेवरेट ट्रैक जो सुनना चाहते हो लिख के भेजो और मैं उस सुनावांगा। ईजी एंड फास्ट तरीका तुहाडी फरमाइश दिल तक पहुँचने का दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी मेरे नाल जुड़े हुए हो और असी इस प्रोग्राम के जरिए ये जी सा रीत है ये मैं निभावगा। फिलहाल पहला गाना तुहाडी पेश खिदमत है जो मेरा फेवरेट है।

पूल खेलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल दे नाल नहीं। अजकल तो महाराज सोशल मीडिया ते ठा ठा करके लोग मिलते ही रहिंदे ने, मिलते ही रहिंदे ने। 107 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे, और प्रोग्राम तुसी दिल चाहता है प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो, और थोड़े मैसेजेस मैं पढ़ रहा, और नाल नाल तुहाडे फेवरेट ट्रैक भी तुहाडे तक पहुँचाए जा रहे हैं। चलो फिर एक होर मैसेज पढ़ते हैं। ये मैसेज मेरे तक कितों पहुंचे है, ये आया जी।

पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान, तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, लहू के दो रंग फिल्म ट्रैक, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, ये सुनना चाहते ने ते फिर असी जरूर सुनाने जी इन्हों लहू के दो रंग फिल्म दा।

दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो और पर्दा पर्दा ए कवाली तुसी सुन रहे हो मोहम्मद रफ़ी साहब दी आवाज़ दे विच सुनी और अगे वधदे हां होर मैसेजेस मेरे लिसनर्स जो मेरे तक पहुँचा रहे ने ते पढ़दे उन्हां मैसेजेस नूं। मैसेज है जी, सत श्री अकाल जी, 1942 लव स्टोरी, एक लड़की को देखा, प्लीज़ प्ले सुखवंत एंड गुरप्रीत। मैसेज मेरे तक पहुँचा रहे ने। अगला मैसेज पढ़ते हैं जी, दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज आरजे जी फ्रॉम हितेंद्र दास स्टेट असम। मैसेज मेरे तक पहुंचा रहे ने जी, थैंक यू सो मच। होर लिसनर जड़े ने मेरे तक अपनी फरमाइशा पहुंचा रहे ने 9855 10 10 27 साढ़े व्हाट्सएप नंबर ते सब दी वारी आएगी। फिलहाल एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ट्रैक सुन दें जी अपना।

107.7 FM रेनबो दे दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो। और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो वैसा लगा, एक लड़की को देखा। मैं लड़कियां दे उत्ते इन्ने गाने बने ने, कोई ये भी कवे कि एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, लड़के को देखा तो ऐसा लगा, है कि नहीं? दिल दी चाहत है भी महाराज होनी चाहिए है कि नहीं? 107.7 FM रेनबो दे हरीश नाल है तुहाडे, और तुहाडे मैसेजेस पढ़ रहे हैं दिल चाहता है प्रोग्राम दे जरिए। ये मैसेज जड़ा अगला मैसेज मैं पढ़न वाला जी, ये आया जी मैनू रमेश चंद्र, सुदेश कुमारी, विशाल शर्मा, तानिया शर्मा, राधिका शर्मा, पिंड सुमाह अखनूर, जिला जम्मू तो। रफी साहब का कोई भी गाना सुनना चाहते ने, थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए जी, जम्मू तो मैसेज आया जी, थैंक यू। अगला मैसेज पढ़ते हैं कृष्णा पाक दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना फिल्म चोर मचाए शोर, किशोर कुमार, आशा भोसले जी दी आवाज़ा, गीत ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ते असी इन्हों इन्हों का ये ट्रैक जरूर सुनाने जी, आओ फिर सुनते हैं।

ए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये थोड़े पिछे दी गलबात हो रही है और वैसे माहौल अजकल भी इदा ही है और ये प्यार दे विच जेकर लै जा रहे ने तो गल ठीक है। और प्यार एक दूसरे नू अपना बनाउण दे लई ही हुंदा है और प्यार इसे तरह कायम रहना चाहिए जिस तरह का प्यार तुहाडा साडा है। और ये प्यार दे नाल तुसी जिहड़े मैसेजेस भेजे ने मेरे तक वो मैं प्यार दे नाल पढ़ के तो फिर थोड़े तक थोड़े ट्रैक पहुंचा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं थोड़ी फरमाइश। चलो एक होर फरमाइश पूरी कर दें। हरीश भाई सप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गीत जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, फिल्म मुसाफिर, आवाज़ ऋचा शर्मा कृष्णा, नाईवाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डा अलका मिड्डा सर धन्यवाद, ये मैसेज मेरे तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इन्हों की फरमाइश असी पूरी कर दें जी, ऋचा चड्ढा की आवाज़ विच।

आए तो कभी फिर जाए ना रब्बा, और जड़ा एक बारी आउंदा है और जिंदगी दे विच वापस तो जाना ही पैंदा है। और इस वेले मैं कितने नहीं जा रहा जी थोड़े कोल ही हाँ। दिल चाहता प्रोग्राम तुसी हरीश दे नाल एंजॉय कर रहे हो और थोड़ियां फरमाइशां मैं पूरियां कर रहा हाँ। आओ फिर एक होर फरमाइश जड़ी मेरे तक पहुंची है उन्हों असी पूरा करते हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, फिल्म साहिबजादे गीत के बोल मेरा लौंग खो गया, ये गाना सुनना चाहते नहीं जरूर सुनावांगे जी। होर फरमाइशां मेरे लिसनर्स मेरे तक पहुंचा रहे ने। प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्रीगंगानगर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, कोई भी फिल्मी गीत प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं जी, बहुत ही चंगा लग रहा है जी। थैंक यू मैसेज मेरे तक तुसी पहुंचाया। और एक गाना प्ले कर दें जी, लौंग खो गया।

0: दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो, थोड़े मैसेजेस हरीश पढ़ रहा है जी और थोड़े गाने भी सुना रहे हैं जो तुसी फरमाइश कर रहे हो। 9855 10 10 27 साडा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज पढ़ते हैं। हरीश जी नमस्कार, प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग पप्पू चोपड़ा, कविता चोपड़ा, सिल्वर कुंज 1 लुधियाना तो। ये मैसेज आया जी, थैंक यू सो मच, मैसेज थोड़ा पढ़िया गया जी। अगला मैसेज पढ़ते हैं। फिल्म 2 और 2 5 सॉन्ग तूने मुझे देखा नहीं, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पींगा वाला चौक, गुराया जलंधर तो। मैसेज मेरे तक पहुँचे जी। अगला मैसेज पढ़ते हैं। अनी सॉन्ग पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, धन्यवाद, थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाउण दे लई जी। और मैसेजेस दी चढ़ी मेरे तक लगी हुई है। हेलो सर, गुड इवनिंग, मेरा नाम नरेश है, मॉडल टाउन जलंधर, ब्लाइंड स्कूल से मुझे सॉन्ग सुनना है, मैं निकला गड्डी लेके, तो ज़रूर सुनावांगे जी सॉन्ग। और फिलहाल असी 2 और 2 5 फिल्म दा ट्रैक सुनते हैं, तूने अभी देखा नहीं।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

सुनो ना, क्या तुम्हें याद है वो दिन, वो घड़ियां, वो पल? मुझे तो आज तक याद है और मुझे कभी वो भूलते ही नहीं। भला कैसे भूलें तुम्हारे साथ बिताए वो दिन, वो पल, वो घड़ियां, मैं कैसे भूल सकता हूं जब तुम मुझसे जुदा हो तब ना। शारीरिक तौर पर एक दूसरे से जुदा होना, दूर हो जाना, मैं उसे एक दूसरे से जुदा होना नहीं मानता। तुम तो मेरी रूह में समाई हुई हो, मेरी रग रग में समाई हुई हो। तुम मुझसे चाहे दूर हो जाओ लेकिन मेरी रगों से बहते हुए लहू से कैसे जुदा हो सकती हो? कभी नहीं, कभी भी नहीं।

तुमसे दूर होकर भी मैंने तुम्हें खोया नहीं है, बस तुम्हारे बिना मैंने खुद को अधूरा पाया है। तुम्हारा दूर जाना मुझसे सिर्फ तुम्हें ही नहीं ले गया, बल्कि मेरे अंदर का सुकून भी साथ ले गया। और अंत में तुम चाहे कहीं भी रहो, मेरी कहानी में तुम्हारे साथ बिताई हुई यादों का स्थान हमेशा सुरक्षित और सम्माननीय रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूंगा, चाहे मैं तुमसे मिलूं या फिर ना मिलूं।

पता है, जब कभी मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है, और साथ में आए सामने आ जाती हैं वो सारी यादें और साथ में बिताए हुए वो सारे ही पल और वो यादें।

ऐसे बसी हुई हैं दिल में कि उनको चाहकर भी मैं निकाल नहीं सकता। ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा सामने क्यों आ जाता है। मैं लाख चाहता हूं कि वो मुझे ना दिखे, क्योंकि जो शख्स जिंदगी से चला गया वो चला गया, पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब मैं चाहकर भी तुम्हें भुला क्यों नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। और मैं खुद इस चीज से लड़ रहा हूं, पता नहीं क्यों। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, तुम्हें पता चले तो मुझे बताना और मुझे इसका हल निकाल कर देना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है।

मैंने कभी भी जब भी तुमसे बात की है तो एक डर जहन में हमेशा रहा है कि ये जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये जो एहसास, ये जो जज्बात एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं, कहीं हमसे खो तो नहीं जाएंगे, कहीं हम एक दूसरे से अलग तो नहीं हो जाएंगे। ना जाने ये डर क्यों हमेशा बना रहता है। क्या ये डर तुम्हें भी लगता है? क्या ये एहसास तुम्हें भी अंदर ही अंदर कभी ना कभी खाता है? कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा? मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन न जाने ये डर क्यों रह रहकर मुझे सताता रहता है, पता नहीं क्यों। और मुझे हमेशा यही रखता है कि कभी तुम्हारी नजरें मुझसे जुदा ना हो जाएं। कभी तुम मुझसे नजरें तो नहीं चुराओगी, फेरोगे तो नहीं मुझसे अपनी नजरें, नहीं ना?

नवें सफ़र दा आगाज़ एक प्यार का नगमा है दी बात। 107 FM रेनबो ते जिस दा आगाज़ हो चुका है एक प्यार का नगमा और इस प्रोग्राम दे जरिए मेरियां गल्लां और नाल नाल मिठे मिठे रेट्रो सॉन्ग्स इस रात नूं होर भी खूबसूरत बनाउंदे होए तुहाडी पेशे खिदमत करांगा। ते अज दा ए पहला ट्रैक साडा प्यार का नगमा दा तुहाडी पेशे खिदमत है। और प्यार दे नगमे जैसा नाम ही प्यार दे नगमे होण उस विच हर रस होना लाजमी है ना।

सुनो, तुम्हें भूल जाना मेरे बस में नहीं है। जैसे एक सिस्टम में एक चिप फिट कर दी जाती है और उसमें सारे फंक्शंस सब कुछ खुद ब खुद चलता है, ना जाने मेरे इस सिस्टम में कौन सी चिप फिट हो गई है तुम्हारे नाम की। अब मैं चाहकर भी उसे डिलीट नहीं कर सकता, फॉर्मेट नहीं कर सकता। ये इस कदर बस गई है मेरी, मेरे अंदर घर कर गई है तुम्हारी याद और तुम। जब भी अकेला होता हूं तो न जाने कहां से आ जाती है तुम्हारी याद, और मुझसे मैं क्या कहूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें भूलना मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं।

मैंने माना कि हम एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, अब हम में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब जब भी तुम मुझे देखती हो या मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता ही नहीं कि वो शख्स, वो लोग जो पहले एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, अब अजनबियों सा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। वो लोग जो एक पल के लिए भी एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे, आज कैसे एक दूसरे को अनदेखा कर पास ही से गुजर जाते हैं हर रोज। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बिना

आज जी नहीं सकते, आज हमारे बिना कैसे अलग हो गए पता नहीं, ये वक्त है या हालात कुछ कह नहीं सकते, या फिर नियते हालात कहें इसे तो बेहतर होगा।

याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। एक मेकअप में लिपटी लड़की से ज्यादा सुंदर लगती है अपने सपनों के लिए कोशिश करती लड़की, जिसके सपने उसने खुद देखे हों, किसी और के दिखाए सपनों में खोकर वो खुद को खोने को तैयार ना हो। वो लड़की जो अपने सपनों के लिए लड़ना जानती हो, वो लड़की। लड़कियों को बचपन से ही ढाल दिया जाता है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल शादी है, लेकिन तुम समझना कि शादी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, मंजिल तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी तुम्हारे जीवन की थोड़ी थकान कम कर सकती है, किसी का साथ तुम्हारे लिए हौसला बन सकता है, लेकिन तुम्हें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि शादी तुमसे है, तुम सिर्फ शादी के लिए नहीं बनी हो। तुम्हें कुदरत ने बनाया है कि तुम अपनी सोच, व्यवहार, कोशिशों से इस दुनिया को और खूबसूरत बना सको। अगर शादी तुम्हें उतना खूबसूरत होने का मौका दे तो फिर उसी को अपना संसार मान लेना, नहीं तो तुम्हारा संसार तुम खुद हो, जिसके लिए तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाने का पूरा हक है। मुझे ऐसी लड़की पसंद है, मुझे ऐसी लड़की पसंद है।

सुनो, तुम ठीक तो हो ना? आज कुछ उदास लग रही हो तुम। उदास हो? जरूरत हो तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कुछ साधारण प्रश्न से थे, पर अक्सर इन्हें उन्हीं ने पूछा जो कभी जीवन संगनी नहीं बन सके। जब दुनिया उसकी असफलताओं का इंतजार कर रही थी, तब उन्होंने उसके संघर्षों को समझा था। उन्होंने उसकी असफलताएं, उसकी बेचैनी रातें और अधूरे सपने देखे, हर कठिन मोड़ पर उसका हाथ थामे रखा। वे उसकी मंजिल से नहीं, उसके सफर से प्रेम करती है। शायद इसीलिए उन्होंने उस सिंदूर की भी कीमत अदा की, और जो कभी उनके हिस्से आया ही नहीं। ऐसा प्रेम कोई कोई करता है, ऐसा प्रेम किसी किसी को नसीब होता है। जिसको हुआ है वो खुश नसीब है। इसी बात के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पर खत्म करता हूं, और जिंदगी दे सफर से तुम्हारे नाल दोबारा मुलाकात होएगी। बाय, टेक केयर। ए पेश खिदमत है इस प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक।